0: जिंदगी के राज, हवा की लहरों से बन के आवाज, ये है प्रोग्राम चराग। पेश किया जा रहा है हर जुमा शाम 7 से 8।
1: From the studios of Inspire FM, the time is now 3:30.
2: Assalamu alaikum. You're listening to Inspire FM. We're now going to play for you the Arabic recitation of the Quran by Qari Abdul Basit of Egypt with Urdu translation.
3: A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim.
4: Shuru Allah ke naam se jo bada meherban nihayat rehmwala hai.

0: Move for 10 आ गया है, This Girl Can का नया चैलेंज, जिसमें हर कोई शामिल हो सकता है। बस 10 मिनट मूव करें, महीने में 10 दफा। मुझे तो अब ज्यादा ही एनर्जी फील हो रही है और कॉन्फिडेंस भी।
1: अब मेरी नींद भी पहले से बेहतर है। सुबह की हल्की सी स्ट्रेचिंग हो या पार्क में तेज वॉक, कोई प्रेशर नहीं, कोई स्ट्रिक्ट स्केड्यूल नहीं। जब आपके लिए ठीक हो, बस मूव करें। मैं पहले ही 3 सेशंस कर चुकी हूँ और बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। पूरे मुल्क की खवातीन इस महीने 10 मिनट 10 दफ़ा मूव कर रही हैं। आप भी ज्वाइन करें, सर्च करें दिस गर्ल कैन मूव फॉर 10।

ये वही लोग हैं जो खुद तो बैठे रहे और इनके जो भाई बंद लड़ने गए और मारे गए उनके मुतालिक इन्होंने कह दिया कि अगर वो हमारी बात मान लेते तो ना मारे जाते। इनसे कहो अगर तुम अपने इस कौल में सच्चे हो तो खुद तुम्हारी मौत जब आए उसे टाल कर दिखा देना।

इन पर दोबारा से जिल्लत मार दी गई, इन पर जिल्लत दोबारा छाप दी गई, मस्कनत यानी बेबसी दोबारा छाप दी गई, और इस दफा इन्होंने अपने ऊपर गजब को भी लाद दिया। लेकिन पिछली दफा किसका गजब था, मिस्र में किसका गजब था? इस दफा कहा वबाउ बिगदब मिन अल्लाह, इस दफा अल्लाह का गजब अपने ऊपर लाद दिया। ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله سبحان الله। एक छोटे से मिस्रन से सारी बात का कलाम का तनासुब सामने आ गया।

0: छोटी सी मिसाल है ये सूरतुल अहज़ाब में, मा जअलल्लाहु लिरजुलिन मिन क़ल्बैनि फी जौफिही। शादी के बारे में बात हो रही है, अल्लाह ताला ने जज्बात के बारे में बात की है, और अल्लाह ने कहा है कि अल्लाह ताला ने किसी भी आदमी के दिल में दो दिल, किसी आदमी के अंदर दो दिल नहीं डाले। मा जअलल्लाहु लिरजुलिन मिन क़ल्बैनि फी जौफिही। यहाँ पे दो अल्फाज जो हैं वो ज़रा अजीब हैं, एक तो है रजुल मर्द, लेकिन अल्लाह ताला ने तो मर्द इंसान कहाँ होता तो क्या फ़र्क पड़ जाता, और फिर दिल की बात है तो दिल कहाँ होता है, सीने में, सीने का लफ्ज़ अरबी में है सदर, तो अगर कहा होता मा जअलल्लाहु लि इंसानिन मिन क़ल्बैनि फी सदरिही, रजुल की जगह इंसान और जौफ की जगह क्या सदर, अगर इंसान कहा होता तो कौन शामिल होता, मर्द भी और औरत भी, ठीक है, और अगर सदर कहा होता जौफ की बजाय तो सिर्फ सीने की बात हो रही होती, जौफ पूरा जिस्म होता है, बात आप समझ गए होंगे। अल्लाह ताला ने मर्द के जौफ के अंदर, यहां से यहां को जौफ कहते हैं, पेट से लेके सीने तक गर्दन तक ये जौफ है हमारा, इसके अंदर दो दिन नहीं डाले, लेकिन औरत के अंदर तो बच्चा आ जाता है ना, और जब बच्चा आ जाता है तो कम से कम कितने दिल हो जाते हैं, दो तो हो जाते हैं, लेकिन वो सीने में नहीं होते, लेकिन वो कहाँ होते हैं, जौफ में तो होते हैं ना। सुभानअल्लाह, मा जअलल्लाहु लिरजुलिन मिन क़ल्बैनि फी जौफिही, सुभानअल्लाह। इज़ क़ाला मूसा लिक़ौमिही, मूसा अलैहिस्सलाम कौन सी कौम पे भेजे गए थे, बनी इसराइल। ईसा अलैहिस्सलाम कौन सी कौम पे भेजे गए थे, सूरत सफ़ में दोनों का एक आयत के बाद दूसरे का जिक्र है, पहले मूसा फिर ईसा। मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं क़ाला मूसा लिक़ौमिही या क़ौमी लिमा तुज़ूरनी, मूसा अलैहिस्सलाम ने जब कहा अपनी कौम से, अपनी कौम से कहा मेरी कौम मुझे तकलीफ़ क्यों देते हो, ये मूसा के अल्फाज हैं। अगली आयत में किसके अल्फाज आएंगे, ईसा के, किस कौम से बात कर रहे हैं, उसी कौम से जिससे मूसा बात कर रहे थे, यही बात है ना। यहाँ कहते हैं या क़ाला ईसा इब्न मरियम या बनी इसराइल, जब ईसा मरियम के बेटे ने कहा बनी इसराइल, इसराइल की औलाद, मैं अल्लाह का रसूल हूँ तुम्हारी तरफ, एक ने कहा मेरी कौम, दूसरी ने कहा बनी इसराइल, देखें। और फिर दूसरा मूसा के बारे में जब कहा था तो मूसा के वालदैन का जिक्र किया, मूसा इबन कुछ कहा कि नहीं, लेकिन ईसा के बारे में क्या कहा, इफ़ क़ाला ईसा इबन मरियम, तो दो फ़र्क आ गए, इन फ़र्कों को समझ लें, और ये एक के बाद दूसरी है, दोनों आयात सूरत सफ़ की हैं। देखिए किसी कौम से होना उसके लिए लाजमी ये है कि आपके वालिद उस कौम से हों। जब मूसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं ना मेरी कौम, तो क्या कह रहे हैं, मेरे वालिद साहब आप में से हैं, मेरे वालिद साहब आप में से हैं। ईसा अलैहिस्सलाम कभी भी या कौमी नहीं कहते मेरी कौम, क्यों, उनके तो वालिद हैं ही नहीं, सिर्फ वालदा है, और वालदा से कौमियत नहीं आती, कौमियत कहाँ से आती है, फादर से आती है, इसीलिए आपका लास्ट नेम, आपका नाम कहाँ से आता है, फादर, आपकी शनाख्त बाप से आती है, आप मदर किस कोई भी एथनिसिटी रखती हो, आपका जो नाम है, हेरिटेज है, वो कहाँ से आ रही है, फादर से आ रही है। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा या बनी इसराइल, या कौमी कहा होता तो बहुत ही गलत बात होती, अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम की, यहाँ तक कि मरियम सलामुन अलैहा की हुर्मत को बरकरार रखा है इन अल्फाज में। दूसरा, यहूदियों ने नई मज़े का हीला डाला, यहूदी कहते हैं कि असल में यहूदी होने के लिए, बाकी कौमों के लिए और है, बाकी कौमों में से होने के लिए बाप का उस कौम से होना ज़रूरी है, यहूदी होने के लिए माँ का उस कौम से होना ज़रूरी है, यानी माँ यहूदी हो तो तुम यहूदी हो, उन्होंने नया फार्मूला निकाला, बात की बात है, मैंने कहा बड़ा प्यारा फॉर्मूला है, लेकिन तुम अपने आप को इसराइल की औलाद क्यों कहते हो, बाप के नाम से तो पुकारते हो, अगर बाप से एथनिसिटी नहीं आती, तुम्हारी शनाख्त नहीं आती, तो तुम्हारी कौम का नाम ही बाप से है, इसकी तो कोई तुक ही नहीं बनती। फिर मैंने एक और सवाल भी पूछा, मैंने कहा मूसा, तुम रबाई से मैंने बात की थी, मैंने कहा मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो तुम्हारे नज़दीक भी मदियन भाग गए थे ना, मदियन भाग गए थे, कहते हैं हाँ भाग गए थे, बाइबल में भी है मदियन अरब कौम है, कहते हैं हाँ अरब कौम है, वहाँ मदियन में उनकी शादी हो गई थी, शादी किससे हुई थी, अरबी औरत से हुई थी, पे औलाद हुई उनकी, तो तुम्हारे नजदीक तो मूसा की औलाद अरब है। फिर मसला क्या है यार? तो अल्लाह ताला ने, बात असल में यह है कि असल में नाम जब इंसान लेता है ना, तो नाम अपने बाप का लेता है, लेकिन अल्लाह ताला ने इस औरत को, इस अजीम शान औरत को इतना मकाम दिया कि एक नबी का नाम लेने के बाद ईसा, इतना काफ़ी ना समझा कि सिर्फ ईसा अलैहिस्सलाम का नाम लिया जाए, बल्कि कि ये कि वो मरियम के बेटे हैं, उनका नाम लिया जाए ख़ास, ताकि ये बात वाजे रहे कि ये ऐसी माँ है जिसके, इस ऐसे बच्चे की माँ है जिसको बाप की ज़रूरत नहीं थी, और इसीलिए वो अपनी कौम को इस तरह नहीं बुलाता। वो कहता है या बनी इसराइल। सुभान अल्लाह, इस एक छोटी सी आयत में हमारा ईसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक अकीदा, हमारा मरियम सलामुन अलैहा की हुर्मत के मुतालिक अकीदा, और जो मकाम अल्लाह ताला ने उन्हें दिया है। किसी और नबी के बारे में आप ये नहीं देखेंगे नूह इब्न मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, नहीं देखेंगे कुरान में, नहीं नज़र आएगा। मूसा अलैहिस्सलाम इब्न आपको नहीं नज़र आएगा, दाऊद इब्न नहीं नज़र आएगा, लेकिन ईसा के साथ मुख्तलिफ मकामात पर क्या नज़र आ रहा है? ईसा इब्न मरियम। तो इसमें किसको इज्जत दी जा रही है? ऐसी औरत जिसने इतनी जिल्लत का सामना किया है अपनी ज़िंदगी में कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। उसने जिस जिल्लत का सामना किया है सलामुन अलैहा, आप अंदाज़ा करो कि उस जिल्लत का सामना करने से पहले कुरान ने रिकॉर्ड कर लिया, उन्होंने कहा या लैतनी मित्तु क़ब्ला हादा, काश के मैं इससे पहले मर गई होती। उनके अल्फाज कुरान में, मरियम में रिकॉर्ड है। और फिर जो खुलेआम लोगों ने उनकी बेइज्जती की है, उन पर इल्ज़ाम लगाया, किसी एक ने, आपको आपसे कोई ऐसी बात कोई फ़ोन पे कर दे, कोई टेक्स्ट मैसेज पे कर दे, कोई प्राइवेटली कोने में जाके कर दे, आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। सारे इकट्ठे होके, सारा मुसलमान मजमा इकट्ठे होके जो उनकी बेहरमती कर रहा है। तो अल्लाह ताला का इंसाफ देखें, जिस औरत ने ये तकलीफ़ और ये इम्तिहान अल्लाह की खातिर उसने बर्दाश्त किया है, उसका क़यामत के दिन तक उसका एहतराम किया जा रहा है। सुभान अल्लाह। ईसा का नाम लेते हुए ईसा इब्न मरियम, इफ़क़ाल ईसा इब्न मरियम या बनी इसराइल, जब भी उनकी ज़बान से या बनी इसराइल निकलता है तो उनकी माँ को सलाम है रज़ियल्लाहु ताला अन्हा व सलामुन अलैहा। या ईसा इब्न मरियम, या इफ़क़ाल ईसा इब्न मरियम या बनी इसराइल। सुभान अल्लाह। मैंने ये नोट्स में डाला नहीं था, लेकिन मैं आपसे फिर भी जिक्र कर देता हूँ अपने नबी के बारे में। मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र है, ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र है, अपने रसूल का भी थोड़ा जिक्र होना चाहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान में या आदम उसकुन अंता व ज़ौजुकल जन्ना, या का लफ्ज़ समझते हैं आप? ए, हम ए तो वैसे इस्तेमाल अब नहीं करते, लेकिन जैसे आदम, आप और आपकी बीवी, किसी को पुकारने के लिए या इस्तेमाल किया जाता है। या आदम, या नूह, इन्नहु लैसा मिन अहलिक, या नूह। इसके बाद ताला कहते हैं या इब्राहिम, कद सद्दक्ता अर्रुया या इब्राहिम, अन्ना देना या इब्राहिम, या नूह, या आदम, या इब्राहिम, या ज़करिया इन्ना नुबशिरुक बिगुलाम, या ईसा इन्नी मुतवफ़ीक व राफ़िउक इलैया, या मूसा इन्नी अना अल्लाह ला इलाहा इल्ला अना फ़अबुदनी, या दाऊद इन्ना जअलनाक खलीफ़तन फ़िल अर्ज़। अंबिया के साथ बार बार क्या आ रहा है? या एक मरतबा कुरान में नहीं है या मुहम्मद, एक मरतबा नहीं है। जब नबी को पुकारते हैं तो कहते हैं या अय्युहल मुज़म्मिल, या अय्युहल मुद्दस्सिर, या अय्युहन नबी, بلغ ما انزل اليك من ربك يا ايها المزمل قم فانذر। سبحان الله। उनको नाम से ही नहीं पुकारते। अच्छा, उनको नाम से वो नहीं पुकारते जब नए बदू इस्लाम में आए, कबीले इस्लाम में आने शुरू हुए हुदैबिया के बाद, तो उनको इस्लाम की तहजीब का कुछ इल्म नहीं था। वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने आए, कबीले के कुछ सरदार वो घर के अंदर थे, वो इंतजार कर रहे हैं घर के बाहर, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर नहीं आ रहे। वो कहते हैं या मोहम्मद उखरुज अलैना, मोहम्मद बाहर निकलिए, हमने बात करनी है। कैसे पुकारा? या मोहम्मद। अच्छा, या मोहम्मद के अल्फाज में कोई बेअदबी नहीं है असलन, क्योंकि या आदम, या इब्राहिम, या मूसा, या ईसा, वो तो कुरान ने भी इस्तेमाल किया है, لیکن جب عام مسلمان نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا یا محمد اخرج علینا، قرآن کی آیت نازل ہو گئی، لا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تم ایسے اس کو ان کو مت پکارنا جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو، ایسا کیا تو تمہارے سارے اعمال ہبت کر لیے جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. اللہ، اتنا اہتمام اللہ تعالیٰ خود نہیں کرتے اور کسی اور کو نہیں کرنے دیتے. اور پھر ان کا نام محمد، محمد جب بھی استعمال کیا ہے قرآن نے، چار مرتبہ محمد آیا ہے اور ایک دفعہ احمد آیا ہے، یہ بھی سن لیں. آل عمران میں کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وما محمد الا رسول، وما محمد الا رسول، جہاں محمد کا لفظ آ گیا رسول بھی آ گیا. ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول اللہ، محمد کا نام آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ. ساتھ میں سورۃ الفتح میں کہہ دیا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. ایک مقام ہے جہاں پر رسول نہیں آیا، اور وہ کون سا مقام ہے؟ سورۃ محمد. سورۃ محمد آل عمران میں رسول کے ساتھ ذکر، احزاب میں رسول کے ساتھ ذکر، فتح میں سورت رسول کے ساتھ ذکر، چار مرتبہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے، چوتھی دفعہ جو میں ذکر کر رہا ہوں سورت محمد میں ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم کفر عنهم سیئاتهم واصلح بالهم. سورت محمد کی آیت ہے. وہاں پر محمد کا ذکر ہے لیکن کس چیز کا ذکر نہیں ہے؟ رسول کا. کیونکہ وہاں پر ایک اور بات ہو رہی تھی، کی جائے گی. اس طرح کہہ رہے ہیں کہ جیسی تعریف وہ اللہ کی کریں گے کبھی کسی رسول نے، کسی نبی نے، بلکہ کسی انسان نے نہیں کی. اور یہ قرآن کی طرف اشارہ ہے، جیسی تعریف اللہ کی اور جیسی وحی اللہ تعالیٰ نے رسول کو دی ہے نا، اس سے عظیم تعریف کسی اور کو نہیں دی گئی. اور شاید اس طرف بھی اشارہ ہے اس روایت میں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کو علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے دن ایسی تعریفیں سکھائیں گے جو کبھی کسی مخلوق کو نہیں سکھائی گئیں، اور ان کو ابھی تک نہیں سکھائی گئی تھیں، انہوں نے کہا تھا کہ سکھائی جائیں گی اس وقت. تو یہ ہے، ہو گئے احمد. لیکن دوسری طرف کہا وہ ایسی شخصیت ہے جس کی سب سے زیادہ کیا کی جائے گی، جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے گی. اب اندازہ کریں عیسائی مذہب آج مسلمان مذہب سے تعداد کے اعتبار سے 2 سے 3 گنا بڑا ہے، تعداد میں وہ ہم سے بہت زیادہ ہے، لیکن حمد پھر بھی کس کی زیادہ ہو رہی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اندازہ کریں. پھر اندازہ کریں کہ عیسائیت، کیونکہ میں نے عیسائیت کو قریب سے دیکھا ہے، امریکہ میں رہ کے میں نے عیسائیت کے بہت سارے فرقے، بہت سارے چرچز، ڈینومینیشنز دیکھی ہیں. عیسائیت کی بنیاد ہے حمد، پریز دا لارڈ، بی گریٹفل. ساری پورے مذہب کی بنیادی کیا ہے؟ حمد. اور پھر پریز جیزس، تھینک جیزس، پوری بنیاد وہ ہے. اور اس جس شخص کی غلط طریقے سے اتنی حمد کی جانی تھی اس کی زبان سے کہلوا دیا قرآن میں کہ کوئی آ رہا ہے جس کی حمد زیادہ ہوگی. سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ تھوڑے سے خواص تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے بارے میں جو قرآن میں. تو ہمیں نعتوں کا شوق ہے، جیسی نعت، جیسی تعریف ہمارے نبی کی قرآن میں ہے نا علیہ الصلوۃ والسلام، انسان کر ہی نہیں سکتا، انسان کے لیے ممکن ہی نہیں. چلے ایک اور مثال کر لیتے ہیں بریک سے پہلے. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. ایک آیت میں کافرون، دوسری آیت میں المشرکون. کافر اور مشرک کا فرق یہاں کیوں کیا گیا؟ ایک آیت میں کافر، دوسری آیت میں مشرک. وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے، اپنے منہ کی ہوا سے، پھونکوں سے بجھا دیں، لیکن اللہ اپنا نور مکمل کر کے رہے گا جتنا بھی کافر نفرت کر لیں. ولو کری حل کافروں. دوسری طرف کہا کہ اس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ کہ وہ تمام دین، تمام نظاموں پر حاوی ہو جائے، جتنا بھی مشرک اس سے نفرت کر لیں. ولو کری حل مشرکون. تو یہاں کافر اور مشرک کی تمیز میں کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ بہت ساری باتیں اس میں کی گئی ہیں، کچھ باتوں کا جائزہ ہم لے لیتے ہیں اکٹھے. نور روشنی کو کہتے ہیں، کفر किसको कहते हैं पता है? इनकार को ही नहीं कहते सिर्फ, कुफर अरबी में कहते हैं दफनाने को। कुफर का असल मायना अरबी में क्या है? दफनाना। जो चीज दफनाई जाती है वो अंधेरे में होती है। कहा है कि जो लोग अंधेरे में है ना, वो दुनिया को भी अंधेरे में रखना चाहते हैं, चाहते हैं कि अल्लाह के नूर को अपने मुंहों से बुझा दें, क्योंकि वो खुद किधर हैं? अंधेरे में। बोलो करी हल काफिरून, अंधेरे वाले लोग हैं काफिर। जो चीज को अंदर दफनाता है उसको काफिर कहा जाता है। बल्कि काफिर का लफ्ज पुरानी अरबी में, इस्लाम से पहले, काफिर का लफ्ज किसान के लिए इस्तेमाल होता था, क्योंकि वो बीज को जमीन में दफनाता था, इसलिए उसको काफिर कहा जाता था। तो यहां पर जो कुफार का लफ्ज और काफिरून का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है ना, उसमें एक मंजर बना दिखाया गया है हमें कि एक तरफ है अल्लाह का नूर और एक तरफ है उस नूर को छुपाने के लिए जो उसको दफनाना चाह रहे हैं अपने मुंह से, अपने प्रोपेगेंडा से, अपनी बकवास से उसको वो छुपाना चाह रहे हैं। अब उसके अपने मीडिया को इस्तेमाल करके, अपने प्रोपेगेंडा को इस्तेमाल करके, अपने चैनल्स को इस्तेमाल करके, अपनी फंडिंग को इस्तेमाल करके, अल्लाह कह रहा है अल्लाह मुतिम नूर, वो तो करके ही रहेगा, उसे तो मुकम्मल करनी है अपनी अपनी रोशनी। वो जितनी भी नफरत कर लें, उनकी नफरत से कोई फ़र्क नहीं पड़ना। इस आयत में भी बहुत अजीम हिकमत पता है क्या है? कुरान अल्लाह ताला का, इस दुनिया में अल्लाह ताला ने कुरान को नूर बताया है। अल्लाह ताला ने कुरान के बारे में कहा है फ़आमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व नूर अल्लज़ी अनज़लना, अल्लाह पर ईमान लाओ, उसके रसूल पर ईमान लाओ और उस नूर पर ईमान लाओ जो हमने नाजिल किया है। तो कुरान के औसाफ में से एक अजीम वस्फ क्या है? नूर। अनज़लना इलैकुम किताबन व नूरन मुबीना, हमने तुम पर किताब नाजिल की और बहुत वाज़ेह नूर नाजिल किया। नूर, अच्छा, नूर की जो नूर का दुश्मन क्या है? तारीकी, वुलुमात, है ना। ये लोग अपने मुंह से, अपने अल्फाज से ऐसे समझते हैं कि ये किसी मोमबत्ती को बुझा रहे हैं। युरीदुना लियुतफिउ नूरल्लाहि बि, तस्वीर क्या खींची जा रही है? को बारीक सी मोमबत्ती है, उसको वो बुझा रहे हैं। अल्लाह ने क्या मिसाल दी है? वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही, जैसे सूरज निकलता है ना तो सारी चीजों पर रोशनी आ जाती है। अब अंदाजा करने की कोशिश कर रहा है, ये सूरज वलौ करी हल काफिरून, क्योंकि जो नूर अल्लाह ताला ने आसमान से नाजिल किया है वो तो सबको रोशन करके रहेगा, लेकिन वो रोशन फौरन होता है कि स्टेजेस में होता है? स्टेजेस में होता है। इस तरह इस नूर का इत्माम जो है वो स्टेजेस में होगा। तो इंसान को, मुसलमान को खामखा पैनिक नहीं करना, ये देखिए क्या क्या बातें कर रहे हैं इस्लाम के बारे में, अब क्या होगा, अब इसका हम कैसे जवाब देंगे, ये तो उन्होंने बहुत ही बड़ा फितना शुरू कर दिया है, अब तो ये नूर खत्म होने के खतरे में है। वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहा अल काफिरून। और इसमें पैनिक करने के बजाय हमारा काम क्या है, हमें क्या जिम्मेदारी दी है? अल्लाह ताला ने मुसलमान को ये जिम्मेदारी दी है कि उसका सीना और उसकी जबान इस नूर को फैलाए, और जब मुसलमान इस नूर को फैलाने का काम नहीं करेगा तो अल्लाह ताला बेसिकली क्या करेगा, हमें हटा के किसी और को रख देगा जो ये काम करने के लायक होगा। हमें चुना था क्योंकि हमारे अंदर सलाहियत है, अगर उस सलाहियत का तुमने इस्तेमाल नहीं करना तो ठीक है, अल्लाह ताला यस्तब्दिल कौमन गैरकुम थुम्मा ला यकूनू अम्सालकुम, तुम्हारी जगह किसी और को रख देगा, वो तुम्हारी तरह के निकम्मे नहीं होंगे। पोटेंशियल हर एक में होता है, टैलेंट हर एक में होता है, टैलेंट का इस्तेमाल सारे नहीं करते, यही बात है ना। वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफिरून। अच्छा, दूसरी तरफ काफिर नहीं कहा अगली आयत में, मुशरिक कहा, उसकी क्या हिकमत हो सकती है? यहां कहा है कि अल्लाह ताला ने एक दीन दिया और उस दीन को तमाम अदियान पर जाहिर कर दिया, यानी उन पर गालिब कर दिया, और इसकी वजाहत लियो दे रहा हूं, उसका इजहार करना, उसके कुछ मायने हैं, एक है गालिब करना और दूसरा कि इसका हक इतना जाहिर हो जाए कि बाकियों का बातिल भी जाहिर हो जाए, कुछ जहूर से इसका ताल्लुक भी है। तो हुआ ये है कि अब लोग क्या सोचेंगे कि ये दीन तो फैल रहा है लेकिन ये भी एक मजहब है और बाकी और भी मजहब है, इनको साथ साथ चलने दो, बराबर हैसियत के हैं, जैसे इंसान सारे बराबर हैं उनके मजाहब भी बराबर हैं, कोई एक कल्चर किसी कल्चर से बेहतर नहीं है, वर ऑल इक्वल, डिवर्सिटी, यूनिवर्सिटीज में डिवर्सिटी सिखा रहे हैं ना आजकल, डिवर्सिटी में क्या है, आप ऐसे हो या वैसे हो या जैसे हो, आप सारे क्या हो, एक ही जैसे हो, अब सब बराबर हो, यू नो डाइवर्सिटी के नाम पे हक और बातिल बराबर हैं, गलत और सही बराबर है, यू नो अदब और तहजीब और जानवरपना बराबर है, और इसका नाम हमने बड़े प्यारे नाम रखे हैं डाइवर्सिटी, राइट। अल्लाह ताला कह रहा है जितना भी ये मुशरिक होता क्या है, पता है मुशरिक क्या होता है? एक चीज को दूसरी के साथ जोड़ देना, उनको बराबर कर देना। इसीलिए बराबर करने के लिए एक और लफ्ज अरबी में है अदल, ثم الذين كفروا بربهم يعدلون, जो लोग अल्लाह ताला पे अपने रब पर कुफर करते हैं वो चीज़ों को बराबर करते हैं, जो लोग बुतों को अल्लाह ताला से बराबर करते हैं, जो लोग ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला से बराबर करते हैं, और जो और अदियान को इस्लाम से क्या करते हैं, बराबर करते हैं। ठीक है, आप भी, आपका भी है, हमारा भी है, सबका है, आपको हमारे दीन को गलत साबित करने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने दीन की हक की बात इतनी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, जिसको चाहेगा वो उधर चला जाए, जिसको चाहेगा वो उधर चला जाए, जैसे रेस्टोरेंट्स हैं आप जिससे भी जाके खा लो, जो दीन है जिससे भी जाके आप जो भी पूजा कर लो, हर एक अपना मस्त है। आपको इतनी ज़्यादा इस दीन के बारे में और इसके गलबे के बारे में और इसकी बात फैलाने के बारे में और इसके दलाइल पेश करने के बारे में क्या तकलीफ है आपको, क्या ज़रूरत है इतनी आपको? तो अल्लाह ताला कह रहा है जिन लोगों को शिर्क पसंद है ना, शिर्क सिर्फ अल्लाह में नहीं होता, शिर्क अदियान में भी होता है, सबको एक साथ रख लो, कोएग्जिस्टेंस है, ये टॉलरेंस की बात है, तो उनके बारे में कहा ये जितना भी नफरत कर लें, इस दीन ने सामने ऊपर उभर कर आना ही है, और जितना ये जाहिर होगा उतना उनका बातिल सामने आ जाएगा, इसी बात से वो डरते हैं, इसी बात से वो मुखालफत करते हैं। वलौ करिहल मुशरिकून, अफला यतदब्बरून अल-कुरान, क्या वो कुरान पर उस पर तदब्बर नहीं करते? तदब्बर कहा जाता है किसी चीज़ के पीछे देखना, दुबर पीठ को कहते हैं। इस आयत के पीछे क्या है, इसके पीछे क्या हिकमत है, एक उसका जाहिर है और उसके पीछे क्या क्या क्या क्या हिदायत, क्या क्या रोशनी, क्या क्या नसीहत उसके पीछे है। असल में ये पूरा कोर्स एक तरह से तदब्बर ही का कोर्स है, सारी मिसालें जो मैं आपको दे रहा हूँ वो हम तदब्बर ही की एक्सरसाइज कर रहे हैं एक तरह से। अल्लाह ताला सवाल पूछते हैं अफला यतदब्बरून अल-कुरान, और अगर किया होता तदब्बर तो कहते हैं वलौ काना मिन इंदी गैरिल्लाह, और अगर ऐसा होता कि ये अल्लाह के अलावा किसी और से आया होता, अगर कुरान अल्लाह ताला के अलावा किसी और से आया होता, कहते हैं लवजदु फी इख्तिलाफन कसीरा, तो ज़रूर ऐसा होता कि इसके अंदर वो बहुत सारा इख्तिलाफ पाते। कॉन्ट्रडिक्शन को क्या कहते हैं उर्दू में, तनाकुज़ात, तजाद, बहुत ज़्यादा तजाद पाते उसके अंदर, इख्तिलाफन कसीरा यानी अगर कुरान अल्लाह ताला की तरफ से ना होता तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा क्या होता, तजाद होता। और इस आयत में इशारा इस बात की तरफ भी है जो तदब्बर करेगा कुरान पर उस पर यह बात पूरी तरह वाज़ेह हो जाएगी कि यह अल्लाह ताला के अलावा किसी और का हो ही नहीं सकता। वलौ काना मिन इंदी गैरिल्लाह लवजदू फीही इख्तिलाफन कसीरा। अजीब बात यह है, इख्तिलाफ का लफ्ज़ कुरान में बहुत दफ़ा आया है, इख्तिलाफ अल-लैली वन-नहार, इख्तिलाफ का लफ्ज़ बहुत दफ़ा आया है, लेकिन इख्तिलाफन जो अरबी नहू समझते हैं ये मनसूब है और नकीरा है। इख्तिलाफन पूरे कुरान में सिर्फ एक जगह है यहाँ पर, तो लफ्ज़ी एतबार से भी अगर ये अल्लाह के अलावा किसी और का होता तो इख्तिलाफन का लफ्ज़ भी कहीं और इस तरह नहीं आया, एक ही मरतबा आया है। सुभानअल्लाह। वलौ काना मिन इंदी गैरिल्लाह लवजदू फीही इख्तिलाफन कसीरा।
1: Subscribe now to the Bayana YouTube channel to watch the rest of this series and more great content from Ustad Norman Ali Khan. Coming up next time on Akhri Mojza.
0: Is ayat ko samajhne mein thoda time lagega, lekin bahut mazey ki hikmat hai, ye bahut bahut khoobsurat hikmat hai. Is tarah sochein ki teen groh hain musalmanon ke, A, B aur C. Theek hai, teen groh hain musalmanon ke aur A aur B ki ladai ho gayi, shadeed ladai hogi dono ki. अल्लाह ताला कह रहे हैं वइन ताइफतानि मिनल मुमिनीन इक्ततलू फअस्लिहू बैनहुमा, अगर ए और बी की लड़ाई हो जाए, एक दूसरे को मार कुटाई पर आ जाए, कत्ल तक नौबत आ जाए, तो उन दोनों के दरमियान सुलह करवाओ। किससे कहा जा रहा है सुलह करवाओ, ए से या बी से या सी से? सी से कह रहे हैं कि ए को बिठाओ और बी को बिठाओ और अब सुलह कराओ। तो तीन ग्रोह हो गए, ठीक है।
2: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM. Inspire 105.1 FM.
3: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا. That whoever sends one supplication upon me, Allah sends 10 upon him.
4: Visit Luton's biggest halal supermarket, the Grand Bazaar Supermarket on Lee Grave Road. For an unbeatable range of fresh halal meat, poultry, fish, fruits and vegetables from all around the world. And all under one roof. Plus everyday essentials, basic healthcare items and even medicine. Everything you need, all in one place. That's the Grand Bazaar Supermarket, Lee Grave Road, just next door to Shell. Luton's largest international supermarket. Open 7 days a week from 9 a.m. to 9 p.m. And view online at grandbazaarluton.com.
5: Universal Clutches on Cosgrove Way in Luton offer more than just clutch repairs. We also now cover MOTs, servicing, brakes, suspension and vehicle recoveries. We've got you covered whether you drive a manual or semi-automatic car, van or truck. We aim to provide a quick and reliable service. And Universal Clutches are an AA and RAC approved garage. For a reliable service you can trust, call 01582 876 300 or find Universal Clutches on Google, Instagram and Facebook.
6: This Black History Month, Inspire FM is recognizing the achievements of influential Black Muslims.
7: Ahmed Rashad, born Robert Earl Moore on November 19, 1949, is an American sportscaster and former professional football player. He became professional after being drafted by the Cardinals.
8: At Blenheim Medical Centre in Luton, we provide expert male circumcision, Katna, Sunnite, Muslimani services for religious and cultural needs. Dr. Mohammed Safdar, consultant urologist, provides these services with a focus on patient safety and dignity in a professional NHS clinical setting. To discuss your requirements, call 07588 206 806 or visit biscotegrouppractice.co.uk.
9: Water is life, yet for millions of people, clean and safe water is still out of reach. Without it, communities face disease, hardship, and daily struggle. For just £150, you can install a water hand pump in Pakistan or Bangladesh, providing clean water for a whole community. Call 0121 446 5682 or visit islamichealth.org.uk to donate.
10: Oh, Hillary. I was going to use newspaper display advertising.
11: But
10: it costs £10 per inch.
11: And that's too expensive.
10: Oh, indeed it is. I want to sell a 10-foot ladder.
11: Oh, Roger, invest in an ear-catching advertising campaign on this radio station instead. It's a great way to tell people about your products and service.
12: For details, click on inspirefm.org, then advertise.
13: From the studios of Inspire FM, the time is now 11:30.

0: जिंदगी, आपके दोस्त, आपके इर्द गिर्द के सारे लोग हमेशा ये कहते रहे वी बिलीव इन यू, बट उनकी आंखों में वो बिलीव नहीं था, उनके एक्शंस में वो बिलीव नहीं था। ये सारे लोग मिलजुल कर आखिर में एक ही कोशिश करते हैं कि आप किसी तरह उनकी तरह हो जाएं और अपना रास्ता छोड़ दें। तो आप अंदर से कभी कभी ये सब हो जाता है, लेकिन आपको पता है आप क्या करने जा रहे हैं। और जो जो एक्शंस मैंने उनके लिए लिए, जो सेकंड जनरेशन के लिए लिए, जो अभी कर रहा हूँ, ये सब एक एक करके फिर एक दिन आएंगे और आपके एहसानमंद भी होंगे, शुक्रगुजार भी होंगे। बट वी डिडंट डू इट फॉर दैट, वी डिड इट बिकॉज दिस वाज द राइट थिंग टू डू, बिकॉज इट वाज द राइट काइंड ऑफ लव दैट यू नीडेड टू नो एंड शो, एंड इट वाज द राइट काइंड ऑफ एटीट्यूड दैट यू नीड टू हैव, अडॉप्ट, अडैप्ट एंड देन डिलीवर। तो ये सारी वो चीज़ें, इससे वापस कुछ नहीं चाहिए था, वापस देने की इंसान बेचारे की औकात ही नहीं है। वो आज आपके लिए बहुत अच्छा है, कल लड़ पड़ेगा, नाराज़ हो जाएगा, दुखी हो जाएगा, वो अजीब अजीब बातें करेगा, वो भूल जाएगा आपने उसके लिए क्या किया, क्योंकि इंसान भुलक्कड़ है, भूल जाने वाली चीज़ है, ना शुक्रा है और बेसब्रा है। लेकिन ये जिस यूनिवर्स का हम हिस्सा हैं, जिसके हमारे अंदर डिवाइन स्पार्क है, वो कुछ नहीं भूलता, उसका रिकॉर्ड स्ट्रेट है, सामने है, रिजल्ट हिस्ट्री का सामने है, वो ज़र्रे के बराबर ना कोई चीज़ भूलता है, ना उसको चूक होती है, ना कोई ऊंघ आती है, ना कोई नींद आती है, ये सब कहीं ना कहीं रजिस्टर हो रहा है। इस सब का जो कुछ आपने किया है, उस सब का बदला, बल्कि उससे बहुत ज़्यादा का वो देगा जिसकी औकात है ये सब करने की, हमारे इंसानों के, लोगों की नहीं है। इनके लिए आप अच्छा सोच सकते हैं, अच्छा बोल सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। जब आप, रब कहता है कोई ऐसा है जो मुझसे कारोबार करे, क्यों उसने कहा कि मुझसे करे, क्योंकि फिर मैं उसको जो रिटर्न करूंगा, मैं अपनी मैग्नानिमिटी में उसका रिटर्न करूंगा। आम इंसानों से हम दुखी हो जाते हैं, इतना काम किया, इतनी ज़िंदगी दी, इतना उसके साथ साथ किया, फिर उसने ये किया, फ़लाँ ने इतना नहीं सोचा, इतना नहीं किया, उन्होंने हमारे लिए इतना स्टैंड नहीं लिया। ये बहुत छोटे मसाइल हैं, ये नहीं लोग पूरे कर सकते, ये बहुत बड़ा काम है और इसके बहुत बड़े रिटर्न्स हैं। तो छोटे छोटे, यू नो, 1% 2% के दिमाग इस्तेमाल करने वाली मखलूक और इस तरह जीने वाली, ये इसके रिटर्न्स नहीं दे सकती। कोशिश, और दूसरी बात जो आप अक्सर कहते हैं और दुखी हो जाते हैं, रब नहीं आपको जीत, उसने नहीं कहा कि तुम जीत जाओ, उसने नहीं कहा कि तुम हार जाओगे तो ये हो जाएगा, उसने कहा मैं सिर्फ, इतना कुछ चल रहा है, ब्रेन वेव चल रही है, ब्रेन में केमिकल्स चल रहे हैं, सोसाइटी का प्रेशर है, माँ बाप का प्रेशर है, सोसाइटी के सेट स्टैंडर्ड्स हैं, जो ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं उनके, उसके बीच में एक आदमी सोच रहा है, सही रास्ता ढूंढ रहा है, अपने आप को पाने की कोशिश कर रहा है, इसके बीच में अजीम तरीन काम आप पहले से कर रहे हैं, तो टेंशन क्या है, और वो है कोशिश करना। कोशिश के सारे पैसे हैं, कोशिश की सारी वैल्यू है, कोशिश के ऊपर ही, और कोशिश से पहले नीयत है आपकी, नीयत और फिर कोशिश, यही इंसान की महराज है, यही उसकी जैनत है, यही उसके टेस्ट का परफेक्ट होना है, और यही उसकी डिलीवरेंस है। तो टेंशन कहाँ है, अब आपको समझ आ रही है कि एक्चुअल में कोई नहीं है, तो व्हाई टू बीट अप आवरसेल्व्स, करेक्ट?
1: करेक्ट सर,
0: नो प्रॉब्लम, नाइस ऑफ यू ब्रदर, थैंक यू वेरी मच, साथ भी रहिएगा और इंशाल्लाह चीज़ें, वो कुछ नहीं, मैं खुद आपके साथ, ये देखें अभी नाक साफ किया, मैं अजीब एक्टर हूँ जो कि मैंने देखा है शोज़ में, मैं जब फिल्म में एक्टिंग करता हूँ, मैं जब मेरे आंखों में आंसू आते हैं इमोशनल सीन पे, नाक बहना शुरू हो जाती है अगला जो प्ले आने वाला है उसमें मैं किसी को सुना रहा हूँ कि भाई ये प्ले है, तो अब जब इमोशनल सीन आता है तो आंखों से आंसू खुद ही बहने लग जाते हैं। तो एक पाकिस्तान के बहुत बड़े एक्टर हैं, उन्होंने मुझे कहा भाई मुझे लोग शहनशाह जज्बात कहते हैं, मैं रोने में कम से कम 1-2 मिनट लगाता हूँ, तू रिहर्सल्स में भी आंखों के ऊपर तूने आंसू रखे होते हैं, कैसे करता है ये? तो मैंने कहा सर देयर इज़ नो लॉजिकल आंसर टू दैट एक्सेप्ट आई एम अ पठान, वी वर ट्रेंड नॉट टू शो आर इमोशंस एंड स्पेशली टीयर्स, और उसके बाद हम फौजी बने। उन्होंने कहा कि जी मर्द को दर्द नहीं होता, हालांकि बहुत दर्द होता है मर्द को, बहुत ज़्यादा, सोच भी नहीं सकते कि आप मर्द को कितना दर्द होता है, ठीक, लेकिन तो वो 30-32 साल तक जालिमों ने हमें रोने नहीं दिया, तो बाद में हमें पता चला हम सारे का सारा एक्टिंग में निकाल देंगे, कभी छोटा भाई बन के, कभी बड़ा भाई बन के, कभी बाप बन के, कभी इमोशन किसी दूसरे की आंखों में रिफ्लेक्ट जब हमसे टकराएंगे तो खुद बहुत सब कुछ हो जाएगा। यू डोंट हैव टू डू मच, एफर्टलेस ईज से एक्टिंग भी हो जाएगी, राइटिंग भी हो जाएगी, और जब मैं थकने लगता हूँ ना, मैं सब कुछ छोड़ के पीछे होके बैठ जाता हूँ कि जोर नहीं लगाना, जोर लग रहा है और लोगों के साथ जोर लग रहा है तो सिस्टम दोबारा बनाएंगे, काम दोबारा करेंगे, कोशिश दोबारा करेंगे, जोर नहीं लगाना। हर चीज़ आपके आंखों के सामने हो, सब स्लो जाएगी। एक्टिंग में उन्होंने हमें एक चीज़ सिखाई थी, गो स्लो, आप ब्रेन को स्लो कर लो, जैसे मार्वल की फिल्मों में स्लो करते हैं तो सुपरमैन को सब कुछ नज़र आता है, अपनी तरह से वो गोली बड़ी तेज़ जा रही होती है और फ्लैश को भी नज़र आता है, लेकिन वो बहुत स्लो जा रही होती है क्योंकि उसकी स्पीड उससे बहुत ज़्यादा है। तो बिल्कुल इसी तरह हमारे जहन की स्पीड बहुत ज़्यादा है, यू हैव टू लर्न टू स्लो इट डाउन। एंड हाउ एम आई एंड यू एंड अस आर गोइंग टू डू इट, वी आर गोइंग टू डू अ शो विच इज़ कॉल्ड ट्रेन योर ब्रेन। तो बहुत जल्द इंशाल्लाह ये होने वाला है, बहुत सारे इसके ऊपर सैर हासिल किस्म की इन्फॉर्मेशन भी और अपनी प्रैक्टिस भी मैं साथ साथ करके दिखा रहा हूँ, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। नाइस ऑफ यू ब्रदर, थैंक यू वेरी मच, मेहरबान हमारे साथ, करते हैं उनसे बात। जी हेलो,
2: हिंको वाले मेहमान?
0: हाँ जी, हिंको वाले आगे।
2: ओके ठीक। अच्छा, सो एक माँ होने के नाते घर में रोबोटिक स्टाइल पे सारे काम होते हैं जिसमें बहुत सी जिम्मेदारियां होती हैं, वो कंप्लीट करनी होती हैं, बचपन से हो रही हैं, काफी सालों का वो बॉडी में उसमें यूज्ड हो गया सब कुछ। अब ये होता है कि बच्चे जो हैं वो बड़े होते हैं, तो हमारा जो देसी माओं का रिवाज है कि हमने बच्चों को हम उसे लव एंड केयर कहते हैं, लेकिन आजकल की दुनिया में उस लफ्ज को डिसेबलिंग कहते, वो डिसेबल हो रहे हैं, बच्चों को वो चीजें आ नहीं रही जो उन्हें जिंदगी चलाने के लिए जरूरी चाहिए। तो एक तरफ बच्चे हैं घर में तो उनके लिए किया जाता है, दूसरी तरफ माँ है उनके लिए भी उसी प्यार मोहब्बत से किया जाता है, काम सेम है। इन दोनों में से मैंने जो एक बेटी से सीखा और एक माँ से सीखा, मेरी बेटी ये चाहती है कि इतने सालों से मैं जो कुछ कर रही हूँ उनको मैंने कुछ करने दी, मेरा ये था कि आप स्कूल जाओ अच्छे ग्रेड लाओ, दैट्स ऑल आई वांट, बाकी सब हो जाएगा, मुझे किसी ने टीच नहीं किया था, मैंने भी जिंदगी से ही सीखा है तो आपको भी आ जाएगा। तो अब उसका ये है कि वो इतनी मैच्योर है कि वो कहती है कि आपने जो कुछ किया है थैंक यू सो मच, लेकिन अब आप मेरे किसी काम को हाथ नहीं लगाओगे। और वो माँ जो इतने सालों से कर रही है उससे ये लग रहा है कि ये बेटी अब इससे दूर होना चाहती है, इससे प्यार नहीं करती, ब्ला ब्ला ब्ला, वो जो फालतू सोचे मेरे पास आ रही थी। तो मैंने उनको अपने ऊपर हावी होने दिया थोड़ी देर के लिए, लेकिन ये मेरी बेटी ने जब मुझे कहा कि मेरी चीजों को आप हाथ मत लगाओ मैं खुद से करूंगी, ये एक बात है। अब मैं माँ के घर जाती हूँ तो मैं अपनी माँ से कुछ चीजें शेयर करती हूँ, मेरी उम्मीद ये होती है कि ये मेरी पर्सनल लाइफ की चीजें हैं, जैसे कोई वीडियो है कोई बात है तो वो मेरी अम्मी अपने तक रखें, लेकिन शायद एक जी शायद एक माँ होने के नाते उन्हें लोगों को ये बताना है कि वो फख्र महसूस कर रही है। मैं अपने आप को पॉजिटिव सोच में लेके जा रही हूँ तो मैं कहती हूँ कि आप इसको शेयर ना करें। अब उन्होंने मुझे नहीं बताया कि उन्होंने शेयर किया है, लेकिन जिनको बताया है उन्होंने मुझे कॉल किया और उन्होंने कहा है कि ब्ला ब्ला ब्ला आई फाइंड आउट दिस फ्रॉम योर मामा, तो आई जस्ट वॉन्ट टू मेक श्योर ये ठीक है या नहीं। तो उस वक्त तो उनके साथ मैंने बातचीत कर ली, फिर मामा को आराम आराम से बात करते हुए मैंने समझाया कि देखिए कुछ चीजें मेरी ऐसी हैं जो मेरी पर्सनल हैं, जब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ तो मैं चाहती हूँ कि एक माँ होने के नाते उसको आप अपने तक रखो। तो अब मेरी अम्मी की सोच एक अलग सोच है, उनको वो चीज, मेरी बेटी ने जब मुझे कहा है कि मेरी चीजों को हाथ मत लगाना, उन्होंने टेक्स्ट किया, मैंने तमाम कर दिया, बात खत्म, लेकिन मेरे दिमाग में सोचें चल रही थी। अब मामा को मैंने ये बताया तो उन्होंने आगे से, हम फेस टू फेस बात कर रहे हैं तो वो आगे से शील्ड अप है, तो मैं तो ऐसे कर ही नहीं सकती, आपने खुद बताया होगा, जो भी उनका तरीका होता है। तो अब इन दोनों सोचों में मुझे ये चेंज करना था कि मैंने अपनी एक बात अपनी माँ को बताई है, मेरी माँ ने उसे जिस तरीके से डील किया है कि उनकी सोच है कि कोई बात कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बुढ़ी त्रीमो तो मार डो ना दस्या कर, मेरे साथ शेयर ही ना किया करो अगर ऐसी बात है, तो बजाय इसके कि जी नेक्स्ट टाइम ऐसे नहीं करूंगी सॉरी हो गया। अब बेटी के लिए मैंने क्या सोचना है कि मेरी जो नेगेटिव थॉट्स हैं उनको मैंने चेंज किया, तो मैंने ये सोचा कि मैं अपनी माँ को एक चीज सिखाना बताना जा रही हूँ, लेकिन मेरी अम्मी की सोच के मुताबिक वो चीज उनको समझ नहीं आ रही, लेकिन जो चीज मेरी बेटी मुझे बताना चाह रही है मैं उसको क्यों नहीं सीख पा रही, मुझे ये सोचना चाहिए कि आया इस बात में उसकी मुझसे अलग होने की सोच है या वो मुझे ये बता रही है कि अब मैं अपने काम खुद करना चाहती हूँ, थैंक यू सो मच जो आपने मेरे लिए लाइफ भर पूरी जिंदगी किया। तो उनको मैंने जी
0: सारी बात समझ गई जो आपने बताई वो भी, जो आपने नहीं बताई वो भी, और सिर्फ मुझे ये बता दीजिए मांझी जो हैं उनकी क्या एज है?
2: 77।
0: आप देखें मेरे साथ रहे, 77 उनकी एज है, वो तकरीबन पुराने ज़माने में 17-18 साल की उम्र में शादियां हो जाया करती थी, उसमें उसके बाद आप अपनी एज को बीच में डाल लें, और उसके बाद जो भी अभी आपकी एज है, उसके बाद जो बच्ची है आपकी, उसकी जो एज है, ये तीन जनरेशन्स की बात हो रही है। ये कम अज़ कम 150 से 175 साल की बात हो रही है, सब ईयर्स अगर मिलाए जाएँ तो। तीन टोटली डिफरेंट माइंडसेट, तीन टोटली डिफरेंट टाइम एंड स्पेस। आपका अपनी माँ और आपकी बच्ची का आपके साथ, मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता हूँ, ब्रेन में क्या होता है, स्टेटस को क्या होता है, और वो फर्स्ट जनरेशन के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है सब कुछ, और क्यों वो हर बात, उनको प्राइवेसी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, वो किसी अकलमंद बंदे को नहीं जानते थे, उसका एक रीज़न है। उनको कभी भी किताब जो है उस तरह पढ़ाई नहीं की जैसे पढ़ाने का हक था। बता तो रहा हूँ 400 साल से हमारे बुज़ुर्गों के जहन पर कोई काम नहीं हुआ हुआ, वो चलती आ रही है जो भी पुरानी ज़माने की कन्वेंशनल विजडम पे, जो एक आध % बंदे का जो दिमाग इस्तेमाल होता था, वो जो कहता था उसकी अपनी इंटरप्रटेशन बनाकर, वो जिसकी जो भी इंटरप्रटेशन थी उसको करके, तो एक और अपनी मर्जी का एक बंदा बात शुरू कर देता था। चाइनीज़ विस्पर का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो बड़ी कमाल चीज़ है। एक बंदा एक से कोई बात करता है, वो दूसरे से, वो तीसरे से, मैं जब किसी को कोई काम कहता हूँ, वो जब किसी दूसरे से बात करके मेरे पास जब वो बात आती है, तो तीन बंदों के बीच में बात बदल जाती है, ठीक है, क्योंकि क्या वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, उस बंदे का माइंडसेट, उसका प्रोसेसर कैसे प्रोसेस करता है इन्फॉर्मेशन को, उसने वो बात कैसे ली, उसमें क्या डाला। इसीलिए मैं लोगों से कहता हूँ जो वर्ड मैंने यूज़ किए हैं सिर्फ यही करना है, अपनी स्पिन ना डालना है उसके ऊपर, क्योंकि जब आप अपनी स्पिन डालने की उसके ऊपर कोशिश करते हैं, तो उन वर्ड्स को जिस मकसद के लिए बोला गया है, जिसके लिए वो वर्ड स्पेसिफिक थे, जिस बात को और जिस फ्यूचर को सामने रख के और उसकी हिस्ट्री को 5-10 साल की सामने रख के बोला गया है, ये ऐसे ही जाएंगे तो ऐसे ही इसका इम्पैक्ट होगा। ये किससे आप सीखते हैं? रब से सीखते हैं। वो कहता है कि मेरी बात में अपनी बात ना शामिल करो, और एक भी मेरी बात अगर तुम्हें समझ आती है तो उसको आगे पहुँचाओ वैसे ही, और इससे थोड़ा बहुत फ़ायदा नहीं है हासिल करना जिसके लिए तुम ये बाकी सारे का सारा कॉन्सेप्ट ही बर्बाद कर देते हो, उसकी इंटरप्रिटेशन में सब ख़राब कर देते हो। तो इससे आदमी ने ये समझना है कि ये सब ऑर्डर पास करने से पहले, कम्युनिकेट करने से पहले, कोई रिक्वेस्ट पास ऑन करने से पहले, इन तमाम चीज़ों को देखा जाता है। वीक आदमी को स्ट्रॉन्ग थाट भी देंगे तो उसको कमज़ोर कर देगा। इसीलिए मैं लोगों से कहता हूँ हर बंदे से मशवरा ना किया करें। जो आपकी रही सही हिम्मत होती है वो भी बुजदिल आदमी जो है वो खा जाता है, और उससे बात करके वो जो एस्पेक्ट आपको दिखाएगा वो कभी आप वो काम नहीं कर पाएंगे। ज़िंदगी में बड़े बड़े काम जो मेरे इर्द गिर्द लोगों ने किए, जिनको मैंने खुद विटनेस किया है या देखा है या किया है, वो सब के सब एक कॉन्सेप्ट को लेने के बाद, आइसोलेशन और उसके बाद बिलीफ को डालने के बाद, प्लान करने के बाद, उसके बाद एक एनवायरनमेंट के अंदर, माइंड के एनवायरनमेंट में बनाने के बाद, एक स्पेस के अंदर ही ऑपरेट किए जा सकते हैं। एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर लोग शुरू करते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो मिरेकुलस चीज़ें लोगों तक पहुंचती हैं। जितने लोग आप बीच में इस्तेमाल करेंगे, इसीलिए कोर टीम्स में 1, 2, 3, 4 लोग होते हैं, वो भी एक ब्रेन वेव के लोग होते हैं, वरना सब का सब ख़राब हो जाता है। अब आते हैं आपके स्पेसिफिक प्रॉब्लम की तरफ। इस स्पेसिफिक प्रॉब्लम की तरफ जो भी आपने कहा है, इसमें तीन जनरेशन्स इन्वॉल्व हैं। एक माँ है जो बीच में है, वो अपनी माँ से जब कोई बात करती है तो वो माँ उसको प्राइवेट नहीं रख पाती, और फिर आप उससे जब समझाते हैं उनको कि ये प्राइवेट बात है, इसको बाहर ना निकालिएगा, तो उनका पहला, क्योंकि वो जिस जनरेशन की हैं आज से 100 साल पहले, उन्होंने कभी अपनी गलती नहीं मानी। वो मर गए, तरस गए, ख्वार हो गए, लेकिन उन्होंने कभी अपनी गलती नहीं मानी, और यहीं से बर्बादी का पहला सबक वहाँ से शुरू होता है, जब आप अपनी गलती नहीं मानते। और उसकी रीज़न है, हम बड़े हैं, हर दाढ़ी वाला बुज़ुर्ग नहीं होता, हर उम्र में बड़ा आदमी अक्ल में बड़ा नहीं होता। कई लोग जिनकी अक्ल दाढ़ी नहीं निकली वो बहुत अक्लमंद लोग होते हैं, ठीक है, ये मेरी लाइन है पिछली वाली गालिब की थी। अच्छा, तो काम की बात जो बीच में करनी थी, जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, मिस नहीं होनी चाहिए, ना फन करते हुए मैं बोर हो जाता हूँ जब सीरियस बात करते हुए, तो मैं अपना एंटरटेनमेंट खुद ही, यू नो, दूसरों पे मैं नहीं बैठता। तो आपने ये समझना है कि वो कभी अपनी गलती नहीं मानेंगे। कुछ बुज़ुर्ग और कुछ बड़े लोग जो 50 साल से ऊपर हैं, जब लोग मुझे उन मसाइल के साथ लेके आते हैं कि उनको मैंने बहुत समझाया, हम लोग हिंदुओं में कहते हैं एक खुदा की था मैंने, यानी मैंने उसको सब ट्रूथ समझाया, रीज़न दी, लॉजिक दी, जो उसने देखा है सच वो सब बताने दिखाने की भी कोशिश की, लेकिन बंदा नहीं मान रहा। ठीक, तो मैंने कहता हूँ वो ऐसे ही हैं, एक्सेप्ट देम द वे दे आर, दैट इज हाउ एग्जैक्टली हाउ दे आर गोइंग टू गो टू देयर ग्रेव. दे कैन नॉट चेंज, दे कैन नॉट चेंज, दिस इज नॉट देयर टाइम टू चेंज. अगर ये बदल जाते तो इनकी जिंदगी में अब ये छोटे मोटे मसाइल होते, ये इतने मिजरेबल होते, ये अपनी औलाद से नाराज होते या लड़ते इस वक्त जब उनको औलाद की ज़रूरत है. लेकिन वो एक थॉट प्रोसेस बन चुका है. हमारे जो बड़े हैं ना सीनियर्स, वो सिर्फ इस वक्त औलाद से उनको तकलीफ़ है क्योंकि उन्होंने जज्बाती वाबस्तगियाँ बहुत की हैं और उनका कुल कायनात और सरमाया उनकी औलाद थी जिसको उन्होंने एसेट नहीं बनाया अपने लिए और वो ख़ुद एसेट नहीं बने. अब जो उनको उनसे ख्वाहिशात हैं वो औलाद पूरी नहीं कर पा रही क्योंकि आगे से उस औलाद की अपनी औलाद है जिसके बहुत सारे लंजे हैं, बहुत सारे मसाइल हैं. और वो और ये जो मिडिल वाली हमारी जनरेशन है, मिलेनियल्स वाली, और ये जो जनरेशन है, इस जनरेशन के साथ और बड़ा प्रॉब्लम है. जो सीनियर्स उन्होंने देखे थे उनकी तरह की, इनका टाइम एंड स्पेस बदल चुका है, ये अब उनकी ज़िंदगी नहीं है. आगे वो जो कन्फ्रंट कर रहे हैं अपनी औलाद की वजह से, जिस एनवायरनमेंट को, जिस टाइम एंड स्पेस को, इसमें भी वो फिट नहीं आ रहे, तो वो सैंडविच हो गए हैं दो जनरेशन्स के बीच में. बट इसी सैंडविच के जो लोग हैं, जो हम लोग हैं, इन्हीं को समझना पड़ेगा कि जो हमसे सीनियर्स हैं वो नहीं बदल सकते, उनका ज़माना बदल गया. इसलिए हज़रत अली का वो कॉल कि अपनी अपनी औलाद को अपने ज़माने की तालीम मत दो, वो तुम्हारे ज़माने के लिए नहीं पैदा हुआ. 50 साल के एज डिफरेंस में ज़माना क़यामत की चाल चल जाता है और आपकी मर्ज़ी पर वो नहीं चल सकते, चीज़ों को अडेप्ट करना पड़ता है. इसीलिए कहा गया कि मोमिन अपने ज़माने से हम आहंग होगा, यानी ईमान वाला, अ बिलीवर इज़ गोइंग टू बी वन, वो जो वननेस है उसकी ज़माने के हिसाब से होगी. इस ज़माने के आर्ट्स, इस ज़माने की साइंस, इस ज़माने की टेक्नोलॉजी, इस ज़माने की वेपनरी उसके पास होगी, पुराने ज़माने में नहीं रहेगा वो. तो अपने आप को अपग्रेड करता रहेगा, अब्रेस्ट रखेगा नए ज़माने की तमाम जो चैलेंजेस हैं और उसके साथ वो लड़ सकेगा. तो ये जो बीच की जनरेशन है, जो हमारी जनरेशन है, जिसका असल काम, जिसके बारे में मैं बात करता हूँ, कि ऊपर वाले का काम ख़त्म हो चुका है. उसमें से कई लोग जो बोलते हैं वो करते ही नहीं है, याददाश्त उनकी कमज़ोर हो चुकी है, वो बीमारियाँ और अपनी दवाइयाँ खाने से और बाकी चीज़ों से और पुराने ज़माने को सिर्फ याद करके. वो याद माजी अजाब है या रब, छीन ले मुझसे हाफिज़ा मेरा, ऐसे किसी ने नहीं कहा था. क्योंकि याद माजी में, माजी में उन्होंने कोई लॉरल्स अचीव ही नहीं किए, एक ही उन्होंने चीज़ की थी, सर्वाइव किया था, और दूसरा आपको बड़ा किया था ताकि आप इस वक्त में उनकी हेल्प करें. लेकिन वो आपकी कोई हेल्प नहीं करेंगे कि आप उनकी हेल्प करें. जेरी मगवायर में था ना क्यूबा गुडिंग जूनियर, जो पागल कर दिया उसने टॉम क्रूज को, कहते तो हेल्प मी हेल्प यू, हेल्प मी हेल्प यू, और इतनी उसने इमोशनल स्पीच दी. आई थिंक इट वॉज इन द रेस्ट रूम, या उसका जो जो रेस्टिंग रूम था वहाँ पे और वो उसकी तरफ चुप करके देखता रहा कि उसने इतने दिलो जान से कहा, और बिल्कुल मर रहा था वो, क्योंकि उसका वो आखिरी क्लाइंट था. और क्यूबा गुडिंग जूनियर हंस हंस के उसका फिर मजाक उड़ा रहा था कि हेल्प मी हेल्प यू, यानी मुझे क्या चाहिए, तुम क्या कर रहे हो. हालांकि वो यही कह रहा था, तू मेरी हेल्प कर, मैं तेरी हेल्प ही करना चाहता हूँ, तू अकेला मेरे पास रह गया है, तू ही मेरा सब कुछ है, तू समझ बात को, और मेरे लिए मेक इट ईजी फॉर मी टू हेल्प यू. लेकिन वो अपनी मर्जी का एक बंदा था. आखिर में जब उसने वो किया जो ये चाहता था, तो उसकी ज़िंदगी हो गई मिरेकल, और इसका भी काम हो गया. लेकिन उससे पहले एक बहुत मुश्किल और तकलीफ दे काम था, जिस फिल्म से आपने सिर्फ यू कंप्लीट मी की जज्बाती अदाकारी उठाई, उससे हमने ये उठाई थी बात. ठीक है जी, तो उसमें जो करने वाले हैं, हर आदमी अपनी सोच समझ के मुताबिक चीज़ उठाता है. इन्जॉय करना, चीज़ को समझना और बात है, रोमांटिसाइज करना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन सीखा क्या आपने, वो चीज़ आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती है और वक्त पे आपको याद आती है जब आप ज़िंदगी में ऐसी कोई काम, ऐसी कोई बात करते हैं, तो दे कम फॉर योर रेस्क्यू. अब इस जनरेशन को समझना है कि ऊपर वाले तो काम ख़त्म हो गया, अब इस जनरेशन ने, ये जनरेशन जो हमारी है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है. क्यों? कि ये पैसा कमा रहे हैं, दे आर सिटिंग एट द हेल्म ऑफ द अफेयर्स, नॉट द ओल्डर जनरेशन जो उनके हमारे पेरेंट्स की है. वो अभी रिटायर्ड हैं, उनको पता नहीं है, लेकिन वो बहुत पहले रिटायर हो गए थे क्योंकि उन्होंने नई कोई चीज़ की ही नहीं. जिस ज़माने में लोग ट्रैवल करते हैं 60-70 साल के ज़माने में, हमारे तस्बीह पकड़ के सारी ज़िंदगी, अब आखिरी उम्र में क्या खाक मुसलमान होंगे, तो जो भी उन्होंने कॉन्सेप्ट मौलवियों ने दिए, किताब तक कुरान खुद नहीं पढ़ेंगे, मौली साहब ने जो कहा है वो पकड़ लेंगे, या किसी को यूट्यूब पे सुन लेंगे, या एक आध क्लिप पढ़ लेंगे, और उसके बाद कहेंगे वाह वाह वाह, सर धुंधने शुरू हो जाएंगे और अपनी तरफ से रिलीजियस हो जाएंगे, लेकिन बच्चे की ज़िंदगी अजाब कर देंगे. ठीक है जी, और औलाद की ज़िंदगी अजाब कर देंगे, और दिन और फतवे کفر کے فوراً لگانا شروع کر دیں گے. ان میں سے زیادہ تر, جنرلائز نہیں کر رہے, سب ایک جیسے نہیں ہوتے, 1% میں نے دیکھے ہیں جو کہ انسانی حالت میں بھی ہیں. ٹھیک, کیوں آپ درد بڑھ, آپ ان کی طرف سے بھی سوچیں, ہائپر ٹینشن بڑھ رہی ہے, ڈائبٹیز کنٹرول میں نہیں ہے, اٹھتے ہیں تو گھٹنوں میں درد ہوتا ہے, لیٹتے ہیں تو درد ہوتا ہے, ہر وقت لگتا ہے کہ ہماری کوئی ویلیو نہیں رہی, یو نو ہماری کوئی عزت نہیں ہے, ہمیں ایسے نہیں پوچھا گیا, ویسے نہیں کہا گیا, ان کی تو اپنی ایک زندگی ہے, چھوٹے بچے نے مجھے, بچے کے بچے نے مجھے یہ کہہ دیا, تو ایسی باتوں پہ میں نے سب ڈرامہ دیکھا ہے, روز دیکھتا ہوں, ارد گرد روز ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ہم جتنے بڑے فنکار ہیں اور ہم جتنے بڑے عظیم انسان ہیں ہمیں بہت اچھی طرح پتہ ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یو ڈونٹ رسپیکٹ دیم, یو ڈونٹ لو دیم, یو ڈونٹ کیئر فار دیم, آل آف دیٹ. اسی لیے رب جو آپ کو جانتا ہے اس نے کہا ماں باپ پر احسان کرو. کتاب کو غور سے پڑھیں, لفظ احسان ہے, احسان احسن سے ہے, جو بھی خوبصورت ترین طریقے سے چیز کی جا سکتی ہے کرو, کیونکہ ان کو اب تمہاری سمجھ نہیں آئے گی, نہ ان کو تمہارے چیلنجز سمجھ نہیں آئیں گے, لیکن جو بھی انہوں نے کیا اس کے حساب سے ان کے ساتھ بہت بہتر سلوک کرو. یہ نہیں کہا گیا کہ ان کی ہر بات مانو, ٹھیک, یہ بھی نہیں کہا, ان کو ہینڈل کرنے کا کہا گیا ہے اور اچھے سے اچھے طریقے سے ہینڈل کیا جاتا ہے, اور وہ آپ کو بھی پتہ ہے, ہمیں بھی پتہ ہے, اور پریکٹیکل رہنا ہے. رب آپ کو عذاب میں اور تکلیف میں جسٹ بیکاز آپ کانشینشیس ہیں, جسٹ بیکاز آپ ہیلپ فل ہیں, جسٹ بیکاز آپ کے جذبات ہیں ان کے لیے, تو آپ دے کانٹ ٹیک یو فار اے رائڈ. آپ نے چیزوں کو ہینڈل کرنا ہے, سنبھالنا ہے, یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, پیار بھی کرنا ہے, جذبات میں قابو بھی رکھنا ہے, پریکٹیکل بھی ان کو رکھنا ہے, ہیلپ بھی کرنی ہے, جو کچھ آپ کر سکتے ہیں سب رکھنا ہے. اصل چیلنج آپ کی جو اگلی جنریشن ہے اس کو ہینڈل کرنے کا ایشو ہے. اس جنریشن کو آپ اپنی مرضی سے ہینڈل نہیں کر سکتے اگر آپ اڈیپٹیبل نہیں, اگر آپ خود سوشل میڈیا کی آپ کو کچھ سمجھ نہیں, اگر آپ ان کے چیلنجز آپ نہیں سمجھتے. میرے کئی دوستوں کے بچے دہریے ہو چکے ہیں, یعنی وہ خدا کو نہیں مانتے, پریکٹیکلی بھی نہیں مانتے, ایکشنز بھی نہیں مانتے, ریچولز میں بھی نہیں مانتے, لیکن آپ زبردستی ان کو دیسی بندوں سے ملوا کے بیٹی کی بھی شادی کرانا چاہتے ہیں, بیٹے کی بھی, اور جھوٹ موٹ کا ان کو شلوار قمیض پہناتے ہیں, زور زبردستی سے ان کو نمازوں کے لیے بھی لے جاتے ہیں, عید کی یا جمعے کی, فائن, سب ٹھیک ہے, لیکن آپ کے پاس ان کے سوالوں کے جواب نہیں. یہ آپ کو شادی سے پہلے سوچنا چاہیے تھا کہ میں ایک ادھورا انسان ہوں, میں ایک اینٹیٹی پہ بلیو کرتا ہوں جس کا بلیف سسٹم میرا بنا ہی نہیں. کل میری بچی, میرا بیٹا مجھ سے سوال پوچھتا ہے رب کے بارے میں, میں اس کو کسی بندے کے پاس بھیج دیتی ہوں جو کہ یہیں کا ہوم گرون اسکالر ہے, انگلش بڑی اچھی بولتا ہے, عربی بڑی اچھی بولتا ہے, لیکن ذہن کا بچہ ہے چھوٹا, جس کا لائف کے بارے میں کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے, اس نے جذبات کا اسلام اور اس کے پاس کچھ ورد ہے, اور وہ جب تکلیف مصیبت پریشانی میں آتا ہے تو عمرہ کرنے چلا جاتا ہے یا جاتی ہیں, اور زیادہ سختی پہ آ جاتی ہیں, لیکن وہ مسئلے کو حل نہیں کرتی. دنیا کا مسئلہ دنیاوی طریقے سے علم سے حل ہوگا, برداشت سے, صبر سے, کمیونیکیشن سے حل ہوگا, ورنہ یہ عدالتوں میں جا کے اور لمبے کام ہوں گے, پھر فورینسک اکاؤنٹنگ ہوگی اور بہت ساری چیزیں ہوں گی. تو جب آپ چیزوں کو ڈیل نہیں کرتے, انسانوں کے ایموشنز کے ساتھ ڈیل کرنا, رسپانسبل ہونا, کمپیٹیبلٹی انسانوں میں ڈھونڈنا, ورنہ یہ ساری چیزیں ہیلو ہائے میں اور انگلش میں گھوم جائیں گی. ٹھیک ہے جی, گھوم کا ہے, گم نہیں, یہ گھومتے گھماتے رہتے ہیں, تو یہ سب کچھ ہو جائے گا. تو اسی لیے پہلے تو یہ کام کرنے سے پہلے بیسک چیزیں ہمارے پاس ہونی چاہیے جو 99% پیرنٹس نہیں کرتے. ٹھیک, ایک بات. دوسری بات, آپ ہم جیسے ہمارے والے کہتے تھے مولوی صاحب مسجد میں جا کے پڑھا دیں گے, وہ ایسی سوٹیاں مارتے تھے, ان کی جو لاٹھیں ہیں نا, ان کے جو نشان ہوتے تھے کمر پہ, بڑے لمبے عرصے تک جاتے تھے. اسی لیے ایک وقت کے بعد جب ہم نے ایک دفعہ قرآن ختم کر دیا, کیونکہ ہمیں ختم کرنا ہوتا ہے, پھر ہم چھپ چھپا کے ہاکی کھیلنے چلے جاتے تھے کہ اس کے زیادہ بینیفٹس ہیں, کم از کم فزیکل فٹنس تو ہو جائے گی, بابا جی کی مار سے جان چھٹے گی ہماری. موزے پہن کے آ جاتے تھے, جرابیں سیدھی کر کے, موزے سمجھتے ہیں آپ لیدر کے ہوتے ہیں, اور اس کے بعد تاکہ وضو اس میں مسا کیا جا سکتا ہے اپنی آسانی کے لیے, اور عربوں سے ریلیٹ کرنے کے لیے یہ چیزیں کی جاتی ہیں. اور بعد میں فوت ہوئے, ناٹ ٹیکنگ اینی تھنگ فرام ہم, کہہ رہے تھے جی بڑے صابر ہیں, شاکر ہیں, کچھ نہیں ہے, بڑی مشکل سے گزارا کرتے ہیں, بینک میں سے اتنے پیسے نکلے کہ لڑائی شروع ہوگی گاؤں میں. اور یہاں آج کے ہمارے اس پروگرام کا اختتام ہوتا ہے جی. دس از آزاد سائننگ آف. یو کین آلسو لسن ٹو آر ریڈیو اسٹیشن ایٹ www.radioazad.us. اس کے علاوہ اگر آپ پوئم سننا چاہتے ہیں, نظمیں سننا چاہتے ہیں, تو آپ ساؤنڈ کلاؤڈ پہ جا سکتے ہیں, مکس کلاؤڈ پہ. اسپیشلی بتانا ضروری ہے ان تمام لوگوں کو جو شوز کی ریکارڈنگ یا اپنے فیوریٹ شوز کی ریکارڈنگ سننا چاہتے ہیں اپنے ٹائم کے اوپر, آپ لوگ مکس کلاؤڈ پہ جا کے ریڈیو آزاد کو سرچ کیجیے اور ہمارے شوز وہاں پہ آپ ان کی ریکارڈنگ سن سکتے ہیں. اور یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ جن لوگوں کے پاس آئی فون ایپ ہے, اینڈرائڈ ہے, بلیک بیری ہے, اسمارٹ فونز ہیں, وہ لوگ ہمارے
3: हमारे आईफोन ऐप के थ्रू सुन सकते हैं जो है रेडियो आज़ाद। तो हम याद रखिएगा, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिएगा, रब आपके लिए आसानी पैदा करेगा। खुदा हाफिज़।
4: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM.
5: Inspire FM.
6: Inspire 105.1 FM.
7: The Quran is the only religious book that is fully memorized word for word by millions of people worldwide, keeping it perfectly preserved for over 1,400 years.
8: Had an accident, a bump, trip or fall? Then you need Claims Specialists, your first choice for accident claims. The specialist claims company on Dunstable Road in Luton. With excellent access to expert solicitors and on a no-win, no-fee basis, Claims Specialists use their 30 years experience to help get you the best compensation possible. For injuries at work, taxi, PCO and private hire incidents, road accidents and vehicle damage, medical negligence, plus rented housing disrepair. In short, when you need to make any claim, click on claimspecialists.co.uk or call 01582 733 222.
9: AK Windows South Limited, manufacturers and installers of high-quality UPVC windows and doors, bifold doors, composite doors, conservatories, porches, skypods, fascias, guttering, and much, much more. We specialise in double glazing and triple glazing using the best German profile. If you want quality at affordable prices, AK Windows is the place to go. If your house needs a facelift, you know who to trust. For a free quote, call AK Windows today on 01582 483 777 or visit us at Unit 10 E, Britannia Estate, Leegrave Road, Luton.
10: Gems and jewels, wise sayings, interesting events, and moral lessons from Islamic history. What is the matter with you when a single disaster smites you? Although you smote your enemies with one twice as great, you say, "From where does this come to us?" Say to them, "It is from yourselves because of your evil deeds, and Allah has power over all things."
11: Enjoy quality and tasty 100% authentic halal Chinese and Thai food from Gao Express, brought to you by the team behind Top's Pizza in Luton. Choose from all your delicious Chinese and Thai favourites. Then order for delivery or collection from Gao Express in Wellington Street, Luton, Marketplace Stevenage, and now also on Nightingale Road in Hitchin. Open daily midday till late. Find the number or order online at Gao, that's G-A-O, express.co.uk, or like Gao Express on Facebook.
12: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम किरण है। कोट कश्मीर ऑर्फन्स रिलीफ ट्रस्ट मेरा एक खूबसूरत घर है, जहां मेरे साथ सैकड़ों यतीम और बेसहारा बच्चों की तालीम व तरबियत और पुरसकून माहौल में परवरिश हो रही है, और ये सब कुछ आपके तावन से मुमकिन है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह करीम आपको सदा सलामत रखे, और उम्मीद है कि आप इसी तरह अपना प्यार, मोहब्बत और तावन जारी रखेंगे। कोट UK ऑफिस 03001234@court.org.uk।
13: होशियार रहें, कुछ लोगों ने फ्रॉड का एक नया तरीका अपना लिया है। वो आपके घरों पर इंस्पायर एफएम और दिगर चैरिटीज के नाम पर चंदा मांगने आते हैं। इनको कुछ भी देने से पहले इनका आईडी कार्ड या फिर इस चैरिटी से राब्ता करके तसल्ली कर लें कि कहीं आप गलत शख्स को रकम तो नहीं दे रहे। इंस्पायर एफएम कम्युनिटी अवेयरनेस मैसेज।
14: From the studios of Inspire FM, the time is now 12:30.
0: बचपन से सुनते आए हैं, ये नहीं कहना, वो नहीं करना, सवाल नहीं पूछना, और फिर इसी रविश से हमारे जहनी और माशरती मसाइल उलझते चले गए। हमारे मसाइल हमारे हालात से नहीं, हमारे ख्यालात से पैदा होते हैं, और ख्यालात दुरुस्त किए जा सकते हैं। मैं हूँ आज़ाद, और अगर आप भी चाहते हैं कि हम सब आज़ाद हो सकें अपने ही पैदा किए हुए मसाइल से, तो बात कीजिए, क्योंकि अब बोल के लब आजाद है तेरे। Only on Inspire FM.
15: Hello and welcome, ladies and gentlemen. Hello and welcome, Dallas, Fort Worth, and the whole world listening to Radio Azad, Voice of the People. Tamam sunne walon ki khidmat mein assalamu alaikum. A very, very warm welcome to the show. Sun rahe ji aap bol ke lab azad hain tere.
0: Aur usse mujhe apna wo scene yaad aa jata hai jab Dubai mein se main ja raha tha Pakistan aur wahan se kuch mehrban baithe shalwar kameezon wale. और वो पर्सनल हाइजीन का उनको कोई कॉन्सेप्ट नहीं था. कई लोग तो उसमें ऐसे भी थे जो लग रहा था उमरा करके आ रहे हैं, लेकिन उनका निस्फ ईमान से क्या ताल्लुक, ठीक है जी. और साफ़ सुथरा होने से, खुशबूदार खुशबू लगाने से, हालांकि वो जिसके लिए जाते हैं, जिसको मानते हैं, उनके बालों के पट्टे, उनकी खूबसूरत आँखें, उनकी खुशबू, दंदान जो मुबारक जो हैं, सारी चीज़ें खूबसूरत खुशबू लगाने वाले. और जो कहते हैं कि क्या इस शख्स ने नहीं सुना उस चीज़ के बारे में जिसको कंगा कहते हैं, सब करने वाले लेकिन वो कुछ नहीं करते. तो मैं एक साहब आए, मैं अपना सामान कुछ चप्पल लेने के लिए, कोई भी चीज़ निकालने के लिए उठा, तो उन्होंने वो भी कुछ अपना सामान लेने के लिए ऊपर से कोशिश कर रहे थे. और मेरा सामान मेरे सर के ऊपर पड़ा हुआ था, उसमें जो कैबिनेट होता है, तो मैं उठा तो वो कहीं अपना सामान उसी कैबिनेट में से निकाल रहे थे, तो उनकी बगल जो थी ना मेरी नाक के कहीं करीब आई. और उसके बाद फिर चिरागों में रोशनी ना रही, क्योंकि हम चकरा कर अपनी ही सीट पर बैठ गए. और वाहिद चीज़ जो मेरे मुंह से उस वक्त निकली वो, क्योंकि आप जहाँ के होते हैं एक्चुअल चीज़ वही आपकी निकलती होती है. अंग्रेज़ी आप भूल गए, फारसी, पश्तो, पंजाबी, सारा कुछ मैं भूल गया. और मेरे अंदर से एक आवाज़ आई, मुँह से भी निकल गई, ओ जालमा, मार सुटी आई. सो क्या करें फिर, हम बेचारे कोशिश करते हैं, हेंगे और फटकड़ियाँ कम किया करो. और फटकड़ी अलम, ALUM, अलम रंग बरसे और अलम तरसे, यही वाले फिर हमारे मसले हैं कि जी सब को रंग बरस रहा है, लेकिन हम अलम जो है वो तरस रहा है कि जी हम पे भी कोई रंग बरसे.
16: तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया साथ रहने का, अपने सवाल पूछने का, अपने अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू साथ साथ हमको देने का. जैसे हमने आपसे वादा किया था जी कि ये फ़न लिस्नर आज़ाद शो होगा, तो हम आपका जो फ़न है वो साथ साथ हम लेकर फिर रहे हैं. आप सिर्फ लेने वाला बनना है, अपने फ़न जो है ना, अपने अपनी हाथ जो है कॉन्ट्रीब्यूट करने वाला जो हाथ है, लेने वाला नहीं, देने वाला हाथ आगे बढ़ाइए. और देते आप आएंगे देने, लेकिन थाली साफ़ करके हम उसमें कोई अच्छी सी चीज़ आपको डाल कर देंगे. 9725019390 को मेहरबान हमारे साथ करते हैं, उनसे बात. रेडियो आज़ाद, यू ऑन द एयर.
17: जी
16: वालेकुम.
17: आप जिस फेज ऑफ लाइफ में अभी हैं, आपको लगता है कि लोग अभी भी किसी एक दो चीज़ों पर आपको मिसअंडरस्टैंड करते हैं?
0: हाँ जी, देखें लोगों की जो अंडरस्टैंडिंग होती है ना, इंसान अपनी समझ के मुताबिक समझता है. वो अगर उसको सीधी सच्ची सादी बात की समझ ही नहीं है, वो जिसको सीधी सच्ची और सादी समझता है उसके लेंस से मेरी बात को सुनता या समझने की कोशिश करता है. इसीलिए मैं भाईजान शेक्सपियर जो थे, वन ऑफ अ काइंड, उनकी वो बात कि आई एम आंसरेबल फॉर व्हाट आई सेड नॉट व्हाट यू अंडरस्टूड. तो बहुत सारे लोग बहुत सारी बातों को अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, जो चीज़ उन्होंने देखी नहीं, कभी महसूस नहीं की, कभी उनके साथ हुई नहीं, तो मैं ये कैसे एक्सपेक्ट करूं कि वो चीज़ें भी समझ जाएंगे. तो इदराक की सीढ़ियां आहिस्ता आहिस्ता लोग चढ़ते और समझते हैं. आप उनके साथ लंबे अरसे तक रहते हैं, हर आदमी आपको वो कलर देता है जो ज़िंदगी और दुनिया उसने देखी. तो वो जैसे उसको जो रंग नज़र आता है, उसकी आंखें जैसी हैं, वो जैसे कलर को परसीव करता है, वो वैसा रंग आपको देता है. आगे जाकर कहीं ना कहीं वो उसकी एक्सेप्शन बनाएगा, तब तक आप उसकी ज़िंदगी में और सोच में रूल हैं. लेकिन लॉन्ग रन में भी अगर वो ऐसे ही करता रहा और आप एक्सेप्शन हैं और आप डिफरेंट हैं और उसको फिर भी उसी कैटेगरी में डाल रहा है, तो कुछ अरसे के बाद वो आपके साथ और आप उसके साथ नहीं रह पाएंगे. तो इसी तरह ज़िंदगी में घोड़े और गधे अलहदा होते हैं, इसी तरह ज़िंदगी में कौन आपके साथ है और किसने रहना है और किसने नहीं रहना, इट इज़ परफेक्टली फाइन टू बी मिसअंडरस्टूड. बल्कि कई लोग अभी तक बहुत सारी बातें जो कभी उन्होंने सिर्फ किताबों में, फिल्मों में, नॉवेल्स में या किसी से सुनी सुनाई हैं, उसके मुताबिक वो चीज़ों को लेते हैं, ना कि उस चीज़ों को प्रैक्टिकल लें. ये जानने के बावजूद कि आई एम इन द बिजनेस ऑफ मेकिंग सेंस हमारी लाइन है, और ये बताने के बावजूद कि मैं कोई भी चीज़ बैलेंस से बाहर ना आपसे कहता हूँ ना करता हूँ, लेकिन उनका बैलेंस,
16: उनकी बात, उनकी सोच, वो एक टोटली और उनकी अपनी कॉन्टेशन है, उसके मुताबिक अगर वो देख लेते हैं, सुन लेते हैं, इतना भी बहुत है। वक्त पे जाके अपने अपने जर्नी के मुताबिक, अपने अपनी जो ज़र्फ है उसके मुताबिक आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें समझ आएंगी। कईयों को इससे बहुत ज़्यादा आ जाएंगी, कई को इससे लीड लेके कोई और ऐसी बात समझ आ जाएगी जो शायद एंगल अभी मिसिंग है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों के साथ होती हैं, और लोग बहुत से भी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंड करते हैं, क्योंकि अक्सर मैंने जब देखा है, जब मैं लोगों से बात कर रहा होता हूँ, जब मैं उनकी आँखों में आँखें डालकर बात कर रहा होता हूँ, तो मुझे उनकी आँखों के अंदर उनके ब्रेन का कनेक्शन बिल्कुल नज़र नहीं आता। ये सब नज़र आ सकता है क्योंकि वो सिर्फ आँखों से आपको देख रहे हैं, लेकिन उनका बिलीफ सिस्टम सुन नहीं रहा, वो समझ नहीं रहे, वो अपनी बात और अपना मसला, अपनी तकलीफ और अपनी अगला जो उसने क्या काउंटर आर्ग्यूमेंट देना है उस पर उनका ध्यान है। दे आर नॉट लिसनिंग। ये हमतन गोश होने वाली बात वैसे किसी ने नहीं की, दैट आई एम ऑल ईयर्स, तो इसका मतलब है मैं पूरे का पूरा दिलो जान से कान बन के आपकी बात सुन रहा हूँ। उस सुनने से ही, यही एक्टिंग है, यही अंडरस्टैंडिंग है कि आप सुनने से ही आपके दिल में जो भी जज्बात पैदा होते हैं उसके मुताबिक आपके अंदर सच, या ये सच है या नहीं है। तो एक आदमी सच सुनने, सच बोलने के लिए आया ही नहीं है, सच की उसकी वैल्यू और कदर है ही नहीं, वो उस पर यकीन ही नहीं रखता, तो अंडरस्टैंड कैसे करेगा? समझदारी में या समझने में तो खराबी हो ही जाएगी ना। बट आप लेवरेज देते हैं, लोगों को चांस देते हैं, एक दो तीन, और उसके बाद कितना वक्त है आपके पास, रिश्ता क्या है उनसे, काम क्या करते हैं आप उनके साथ, इन तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए या रिश्ते लंबे चलाएंगे आप या नहीं चलाएंगे या कम चलाएंगे। तो ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग जो है अलाउड है, लेकिन कुफर अलाउड नहीं है। जब चीज़ सच आपके सामने आ जाए और अपनी ईगो की वजह से या अपनी वीकनेस की वजह से या आप एक्सपोज ना हो जाएं की वजह से इस किस्म की बातें अगर आप करते हैं तो फिर आप कभी नहीं सीखेंगे। तो वो वाली जो चीज़ें हैं वो एक्सक्यूजेबल नहीं है।
17: अच्छा, मैं ये सोची थी, जब हमारे पेरेंट्स का ज़माना इतना पुराना भी नहीं है, जो चलो मेरे दादा दादी का ज़माना के लिए, वो लोग जब कोई मसला होता था तो वो लोग सिर्फ उस मसले को सामने रख के उसका हल निकालने की कोशिश करते थे। अब जो मैं रिसेंटली ऑब्जर्व कर रही हूँ कि या तो इनफ्लक्स ऑफ टू मच इन्फॉर्मेशन एंड टू मच नॉइज अराउंड अस, हम लोग इतने कंफ्यूज हैं कि हमने इनकंसिस्टेंसी को उसको एक्साइटमेंट का दर्जा दे देते हैं। अगर कोई स्टेबल नहीं है तो हम कहते हैं, अगर कोई इंसान स्टेबल आपको मिल जाता है हम कहते हैं ये तो बोरियत हो गई है। अगर कोई इंसान एफर्ट डाल रहा है किसी चीज में हम कहते हैं कि ये तो डेस्परेट है। अगर कोई चीज टाइम दे रहा है कोई इंसान तो हम कहते हैं कि ये तो इसकी अपनी कोई नीड्स है, ही इज बीइंग नीडी। तो ये जो हम आप कहते हैं ना इंसान मीनिंग मेकिंग मशीन है, हम लोगों ने चीजों के अंदर से मीनिंग निकालने का जो ये काम शुरू कर दिया है, इसको अपने जहन में कॉम्प्लिकेट किया पहले, फिर अपनी जिंदगी में कॉम्प्लिकेट किया। तो इस चीजों को मीनिंग मेकिंग मशीन जो हम लोग कर रहे हैं अपनी डेली लाइफ के एक्सपीरियंसेस में और रिलेशनशिप में और सिचुएशनशिप्स में, इन सब में कैसे मीनिंग को ड्राइव करने को सिंपल प्रोसेस में ढाला जा सकता है?
16: जो एक आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की है कि जो इंसान, जैसे आप कहते हैं कि मीनिंग मेकिंग मशीन है, तो हम अपनी मर्जी के चीजों में से मीनिंग निकाल लेते हैं, तो कैसे हम ऐसा माइंडसेट लेके आए कि वो मीनिंग ना निकाले? तो ये नहीं हो सकता। इंसान अगर मीनिंग नहीं निकालेगा, आप समझें, देखिए रब कहता है कि जी किसी की टो में मत रहो, नुकसान में रहोगे, तकलीफ में रहोगे, यानी कि किसी दूसरे के बारे में क्यूरियस ना हो, उसके शबो रोज के बारे में, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते, किसके साथ मिलके करते हैं, उनकी ज़िंदगी का क्या मकसद है, उनके पीछे लगे रहने से बाज रहो, क्योंकि ये मॉर्बिड क्यूरियोसिटी है दूसरे बंदे के पीछे जो आप कर रहे हैं। असल में मैंने तुम्हें क्यूरियोसिटी दी है अपने बारे में जानने के लिए, अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए, अपने खालिक को समझने के लिए, अपनी मखलूक इर्द गिर्द समझने के लिए, अपना रास्ता बनाने के लिए, अपना मकसद ढूंढने के लिए मैंने तुम्हें तजस्सुस पैदा किया है, ताकि तुम आगे बढ़ सको, ज़िंदगी का कोई मकसद रहे, एक्साइटमेंट रहे। लेकिन हमारी एक्साइटमेंट, हम दूसरे लोगों की ज़िंदगी, वो क्या कर रहे हैं, उनके पास क्या है, मेरे पास वो क्यों नहीं है, इससे आपको मना किया गया। बिल्कुल इसी तरह मीनिंग मेकिंग मशीन तो इंसान है, अगर मतलब ही नहीं है, ज़िंदगी का मतलब नहीं है तो फिर क्यों जीना है, रिश्तों का मतलब नहीं है तो फिर क्यों रिश्ते बनाने, औलाद का मतलब नहीं तो फिर क्यों पैदा करनी, हर चीज़ का अगर खालिक के साथ कोई रिश्ता नहीं है तो फिर ये इतनी तकलीफ परेशानी उठाने की और करने की क्या ज़रूरत है। तो ये समझना है आपने कि मीनिंग मेकिंग तो नहीं जाएगी, ये इंसान मीनिंग बनाता है तो वो इंसान है, जानवर मीनिंग नहीं बनाता तो वो जानवर है, फाइट एंड फ्लाइट के मोड में बेसिक इंटेलिजेंस है। इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ की डिमांड ये है कि आप मीनिंग बनाएं, लेकिन कौन सा मीनिंग, वो मीनिंग जो असल मीनिंग है, जैसे मैंने क्यूरियोसिटी का ज़ात के अंदर मीनिंग होना,
0: और उसका रिजल्ट ओरिएंटेड होना और उससे फ़ायदा उठाकर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ना, ये मीनिंग है। लेकिन उसी का गलत मीनिंग निकालना और उसके रिजल्ट्स आप देख लीजिए क्या है लोगों की ज़िंदगी में और तकलीफ परेशानी कितनी ज़्यादा है। तो ये मीनिंग कहाँ से आएगा? जब मकसद क्लियर होगा। मकसद कैसे क्लियर होगा? जब माइंड क्लियर होगा। माइंड कैसे क्लियर होगा? जब आप किसी की सुनेंगे। किसकी सुनेंगे आप? जिसने आपको पैदा किया। बीच वाले ठेकेदारों की बात नहीं हो रही है जो आजकल मिलते हैं। उस किताब को आप पढ़ने की कोशिश करेंगे, जो भी आपके अपने अपने मज़हब की किताब है वो सारी एक ही जगह पे एंड में आपको कन्वर्ज होती हुई नज़र आएगी। उधर से आप राइट एंड रॉन्ग लेंगे, वहाँ से आप ज़िंदगी का मकसद लेंगे, गाइडलाइंस लेंगे, और फिर जो जिस ज़माने में भी आप हैं उस ज़माने में एग्जिस्ट करते हुए, उस ज़माने के साथ चलते हुए आप अपनी ज़िंदगी का मकसद और अपने इर्द गिर्द के मकसद के लोग उठाएंगे। तो ये जब आप करेंगे तो मीनिंग सीधे होंगे। जहाँ तक ये बात कि अगर कोई बंदा किसी से आप मिलते हैं, कोई रिश्ता होता है, तो अगर वो बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहे हैं तो आपको लगता है कि वो डेस्परेट है, बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, लेकिन क्या वो एफर्ट बैलेंस से आउट है? अगर वो बैलेंस से आउट है, बहुत ज़्यादा एफर्ट हो रही है, लव बॉम्बिंग जिसे आप अभी बनाया था वो हो रही है, या मकसद के साथ के मुताबिक मिलना जुलना चाहना और दोनों क्रेडिट एंड डेबिट बैलेंस करके आप साथ चल रहे हैं। अब ये बात कि ये मैकेनिकल होगी, बिल्कुल नहीं, ये कंसिस्टेंसी हो रही है। लोग जो कहते हैं जी कि कंसिस्टेंसी इज बोरिंग, बिल्कुल भी नहीं है। उन लोगों का दिमाग जो है वो अपने काबू में नहीं है। असल में जब आपका इमेज बिल्ट हो जाता है एक चीज़ का, एक ब्रांड का इमेज बिल्ट हो गया है कि जी उनके उसका क्लास है एक, तो उसी के तो सारे पैसे हैं। फिर उसमें वो इनोवेशंस करेंगे, चीज़ें करेंगे, रिफाइनमेंट बढ़ती जाएगी, एक्सेलेंस बढ़ती जाएगी, तो वो और ऊपर जाएगा। इसीलिए ब्रांड्स की क्लासिफिकेशंस हैं, उसके हिसाब से यू गेट व्हाट यू पे फॉर, और उसके हिसाब से आप उस ब्रांड से एसोसिएट करते हैं। एग्जांपल सिर्फ दे रहा हूँ। तो इंसानों में भी यही होता है, किस इंसान का कितना रिफाइंड जौक है, उसके क्या शौक है, उसके क्या रिश्ते हैं, और वो क्या किस तरफ किस रास्ते पर है, और आप उस रास्ते पर हैं कि नहीं। ये जो आपका पिछला वाला क्वेश्चन था कि क्या अभी भी इस उम्र में और ये सारे काम करने के बाद भी आपको लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं, तो ऑफ कोर्स करते हैं, क्योंकि वो अपने लेवल से मुझको देखने की और मेरी बात को समझने या करने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो कई चीज़ें क्वालिफाई नहीं करते और ऊपर से बात को पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो ऊपर की अगर आपको ऐसी इंग्लिश की लैंग्वेज बोलना चाहते हैं जिसके बेसिक्स आपको वर्ड्स नहीं आते, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन नहीं आती, उसके अंदर इमोशन डालना नहीं आता, उसको आप इंडिविजुअलाइज नहीं कर सकते हैं, अपने साथ मिलाकर आप पर्सनलाइज नहीं कर सकते हैं, तो ऑफकोर्स वो रिजल्ट्स नहीं आएंगे उनके। सिर्फ किसी की बात लेकर किसी जगह पर लगा देना या चिपका देने से आप अकलमंद नहीं हो जाते कि रूमी ये कहता था, उसका मतलब क्या है। रूमी की बात के 150 कॉन्टेशन हो सकते हैं, किस टाइम फ्रेम में कही गई, किस रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में कही गई, वो किस लेवल मजाज के लिए कही गई, हकीके के लिए कही गई, वो इंसान के लिए कही गई, रब के लिए कही गई, क्या है। तो सिर्फ लगा देने से आप अकलमंद नहीं हो जाते कि 700 साल पुरानी एक बात उठा के लगा ली तो उससे कहीं आप आकिल और बालिग हो जाएंगे और अब आप ज़िंदगी में सारी चीज़ें ऐसे ही करते हैं। इन बातों का कोई मतलब नहीं होता है जब तक आप वो जी कर या करके नहीं दिखाते। तो ये पॉइंट आपको बहुत ही, दोनों पॉइंट बहुत ही वैलिड थे, लेकिन उसके साथ आपने ये देखना है कि चीज़ों को बस बैलेंस में रखना है हमेशा। बैलेंस में क्यों? क्योंकि यूनिवर्स बैलेंस में चलती है। बैलेंस में क्यों? क्योंकि बैलेंस के ऊपर और नीचे जो लिमिट्स लगाई जाती हैं, रब कहते हैं लिमिट्स के बाहर मत निकलना, ये ज़ालिमों में से हो जाओगे, क्योंकि इसके ऊपर की लिमिट्स में गर्दन कटा बैठो और नीचे की लिमिट में हाथ कटा बैठोगे, इसलिए दरमियान में रहो, ये सेफ है आपके लिए, म्याना रवि, दरमियाना रास्ता। तो इसीलिए रिश्तों में भी इतना मोहब्बत में आगे ना निकल जाएं कि फिर वो नफरतों में और दुश्मनी में बदल जाए। मुअय्यन हद है हर चीज की, उसके बीच में रहें तो लॉन्ग रन में आप जाएंगे। कुछ लोग बहुत अथरे होते हैं, उनको बड़ी जल्दी होती है, बहुत नोजी होती है, उन चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं जिनसे उनको तकलीफ हो सकती है। तो जिंदगी में सीक्रेटिव नहीं होना, जिंदगी में प्राइवेट होना और बात है, सीक्रेटिव होना और बात, किसी ने बताया नहीं उनको। एक बहुत बड़ी हस्ती की लाइन है, जो इंसान अपना राज छुपा गया वो अपनी मुराद को पहुंच गया। राज का मतलब ये नहीं कि आप CIA KGB या ISI के एजेंट हैं, वो खाम खाई आप पे लगा देंगे कोई ना कोई फतवा या कोई और बात। उसका मतलब राज ये कि आपका डीपेस्ट डार्क जो डिज़ायर है, डीप जो आपकी डिज़ायर है वो क्या है, डीपेस्ट डार्केस्ट सीक्रेट जो आपने अंदर रखा हुआ है कि मैं ये चीज़ करना चाहता हूँ, मैं इस रास्ते में के तार अंदर जाना चाहता हूँ, ये सब। और उस रास्ते पर जब आप हों, हर वक्त उसको वर्बलाइज नहीं करना है, उसको अपने अंदर रखना है, चीज़ों को अपने अंदर रख सकने की ताकत रखनी है, जज्बात को, एहसासात को, सोचों को वक्त के मुताबिक, किसी ने क्या किया, क्यों किया। सब्जेक्टिव आदमी कभी भी ऑब्जेक्टिव आदमी की बात नहीं समझ सकता। रब इसीलिए आपसे कम्युनिकेट कर रहा है थर्ड पर्सन के तौर पर, ऑब्जेक्टिव होकर बताया जा रहा है। तुम का मतलब सिर्फ तुम नहीं हो, तुम का मतलब एक आलम है, तुम का मतलब एक कौम है, तुम का मतलब उम्मा भी हो सकती है, तुम का मतलब हम और आप भी हो सकते हैं। और कभी जनरलाइज भी किया जा रहा होता है, हम वो नहीं होते, लेकिन कभी हम वो थे भी, कभी हम वो हो भी सकते हैं। तो इस तरह जब आप चीज़ों को देखेंगे, इसीलिए शॉर्ट साइटेड आदमी फोर साइटेड आदमी की बात नहीं समझ सकता, मिसअंडरस्टैंड ही करेगा, थोड़ा ही समझ पाएगा। अंडरस्टैंडिंग वक्त के साथ साथ, एक्सपीरियंस के साथ साथ, डायरेक्शन के साथ साथ, उस्ताद के साथ होने के साथ साथ, रब से सीखने के साथ साथ, अपने आप से सच बोलने के साथ साथ, अपने शीशे में अपने आप को देख सकने के साथ साथ, अपने डेविल इनसाइड जो है उसको हैंडल करने के साथ साथ, और द एंजल्स इनसाइड जो है उसके साथ हाथ मिलाने के साथ, और फिर ये ऊपर नीचे का एक खूबसूरत सा सिस्टम है, इसके साथ हैंडल करना है। ये एक रब ने हम लोगों को मुश्किल चीज़ दी है। क्यों दी है? क्योंकि ये हम ही कर सकते हैं, इसलिए नहीं कि जुल्म किया गया है हम पर, इसलिए कि हम ही ये उठा सकते थे, इसलिए कि हम ही ये दुनिया में इन्वेंशंस डिस्कवरीज कर सकते थे, इसीलिए हम चांद तक और आसमानों को खोल सकते थे, इसीलिए कि हमारे अंदर ये सारे पोटेंशियल हैं, लेकिन हम बेयर मिनिमम पे उसको इस्तेमाल करके बहुत ही निचले लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं। जो ऊपर के लेवल पे ऑपरेट करते हैं उनको हम कभी तकलीफ़ें भी देते हैं तो वो भी उनकी खूबसूरतियाँ होती हैं। क्या नाम था नेपोलियन भाई साहब का जिन्होंने कहा था, लाइफ विदाउट स्कार्स इज़ अ शैलो लाइफ। तो अगर आपको कुछ चरके लगे हैं, तकलीफ हुई है, कट्स लगे हैं, कोई बात नहीं, यही वो कट्स हैं जो कोल की माइन में, कोयले की कान में, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर, स्पेसिफिक प्रेशर के अंदर एक कोयले को हीरा बना देती हैं। और फिर एवरी कट अ डायमंड रिसीव्स एड्स अ न्यू डिमेंशन टू द लाइट दैट इज पासिंग थ्रू इट, मेकिंग इट मोर प्रेशियस। तो वो मैं हूँ, आप हैं, हम हैं, मैं ही क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? रोना धोना बंद करें, रोने धोने से डुब डुबाई हुई आंखों से आप नज़ारे नहीं देख सकते। पिछली बातें, पुरानी बात, ये एक्सपीरियंस है जो रास्ते में आए। आपने बहुत बड़े बड़े ब्लंडर्स किए हैं। जब भी मुझे लोग कहते हैं जी मैं क्यों, मेरे साथ क्यों हुआ, मैं उनको कभी कभी जो अगर करीबी हैं तो बता देता हूँ, कई लोगों के सामने खामखा हर वक्त बुरा बनने की क्या फ़ायदा है, लेकिन कभी कभी मैं कहता हूँ आप बैठ जाए मैं आपको बताता हूँ, आप इसलिए कि आपने ये गलती की है, ये कुदरत के कानून तोड़े हैं, ये ब्रेन के कानून तोड़े हैं, ये रीज़न के और लॉजिक के कानून तोड़े हैं, ये बैलेंस के कानून तोड़े हैं, इसीलिए आप ही है ना, और कौन है, किसको देते हैं? और कोई फेवरेट चाइल्ड नहीं है। कोशिश जो कर रहा है उस रास्ते पर कोशिश कर रहा है, थक रहा है फिर चल रहा है, उठ के फिर ईमान अपना मजबूत करके रोज़ घटता बढ़ती हुई चीज़ को उठा कर चल रहा है, वही है फेवरेट, क्योंकि वो कोशिश कर रहा है। इसलिए तो काम बहुत सिंपल और सादा है, ठीक है। अब मेरे पास वक्त कम है और मैं चाहता हूँ कि आपको ना थोड़ा सा, क्योंकि हमने म्यूज़िक का वादा किया था, वो भी आपके साथ करें। और मैडम जी, आपका आज का क्वेश्चन भूला नहीं हूँ मैं, सवाल बहुत अच्छा था, टफ लव का कॉन्सेप्ट। अगला शो शुरू उसी से करेंगे हम, ये जो हमें 10 सीरियसली इट वॉज 10 days ऑफ साइलेंस एंड सॉलिट्यूड के बाद जो अगला शो होगा उसमें यहीं से शुरू करेंगे टफ लव का, बिल्कुल बेसिक करके आपको समझाऊंगा व्हाट इज टफ लव, हाउ टू अप्लाई इट टू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट्स। ये बेसिक क्वेश्चन है आपका, ठीक है। अभी भी बता सकता हूँ वक्त कम है, लेकिन फिर मज़ा नहीं आएगा, मेरा ध्यान जो है टाइम पर हो जाएगा, और आजकल हम टाइम की पाबंदी करने की कोशिश कर रहे हैं। शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आप तमाम लोगों का इस खूबसूरत 2 घंटे के लिए जो हमने आपके साथ गुजारे। ये गांधी साहब ने जब मुझे कहा था, मुझे बड़ा अच्छा लगा था, चप्पल पहनते हुए उन्होंने कहा था आज़ाद साहब 2 घंटे जो हमने आपके साथ गुजारे बड़े खूबसूरत घंटे थे। तो मैंने कहा सर नाइस ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच, इट मीन्स अ लॉट, और दोबारा भी हम मिलेंगे। तो फिर जब मैं उनसे मिला कुछ सालों का, मैंने कहा सर बड़े दिन हो गए, लोग भी चाहते हैं कि आपका इंटरव्यू किया जाए। तो आगे से मेरा हाथ पकड़ के कहते हैं, मुस्कुराती हुई आवाज़, उनकी बड़ी एक कमाल किस्म की मिस्चीवियस स्माइल उनके चेहरे पर रहती है जब भी मुझे मिलते हैं, जब अब कोई बात करते हैं तो मेरी तरफ देखते हैं, तो कहते हैं कभी ऐसा हो सकता है कि हम इंटरव्यू के बगैर भी मिलें? मैंने कहा सर बिल्कुल हो सकता है, एंड देन वी मेड श्योर कि दैट हैपन्स मे बी आफ्टर फ्यू ईयर्स, बट यस इट इज़ ऑलरेडी हैपन्ड। तो इसी तरह ये जो मुश्ताक है ना,
16: جو اشتیاق ہے کسی سے ملاقات کا, یہ ساری چیزیں بڑی خوبصورت کر دیتا ہے. آپ صرف ملاقات کے قابل ہوں اور اس کو خوبصورت کرنے کے قابل ہوں, اور اپنی خواہشات کو پیچھے چھوڑیں. آپ جیسے دنیا کو دیکھنا چاہتے ہیں, جیسے دنیا کو ہونا چاہیے, کے بجائے وہ مومنٹ اگر آپ جی لیں گے نا, کچھ مومنٹ کی زندگی ہے ساری, اور وہ مومنٹ کسی کے پاس نہیں ہے. لوگ بڑے تہی دامن تہی دست خالی ہاتھ ہیں سارے, اسی لیے وہ کچھ دے نہیں پا رہے. ہر بندہ لینے کے چکر میں ہے. لینے کے سوچتے رہیں گے آپ اگر ہر وقت, تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے آپ کو. دینے پہ دھیان دیجئے, مومنٹ خود بخود بن جائیں گے, اور وہی مومنٹ آپ کی زندگی کا کل سرمایہ, کل اثاثہ, کل ایسٹ, ٹوٹل ایسٹ اینڈ میں نکلتے ہیں آپ کے. گرینڈ ٹوٹل اس کا وہ بنے گا, یہی جتنا آپ نے کنٹریبیوٹ کیا, اور جس ذہن سے, جس ایٹیٹیوڈ سے کیا ہے آپ نے, لمبے عرصے کے لیے اور زیادہ مومنٹس آپ کو مل جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی, کچھ اشعار ہیں آپ کے نظم کے آخر میں آپ کو پیش کرتے ہیں, اور اس کے بعد ایک چھوٹا سا ٹریک, کیونکہ زندگی آپ کے اختیار میں ہے جی. رب نے آپ کو کنٹرولیبل فیکٹرز کا کنٹرول دیا ہے, انہی کو کنٹرول کر کے آپ کی یہ زندگی خوبصورت ہوگی. کوئی مسیحا نہیں آنے والا ہے, آپ ہی زندگی کے مسیحا ہیں. آپ ہی وہ معجزہ ہیں جس کا آپ انتظار کر رہے ہیں. آپ ہی وہ کمال ہیں جس کا کب سے آپ انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی جمال والا آئے گا اور اپنے جلال سے آپ کی زندگی میں کمال پیدا کر دے گا. آپ ہی وہ کمال ہیں جس سے آپ کی زندگی میں جمال آنا ہے, اور جس کے آپ کے کام میں جلال آنا ہے, اور جس سے آپ نے یہ ایکسلنس اچیو کرنی ہے. آ چکے ہیں آپ, خود پر ایمان لے آئیے کہ آپ ڈان اپون جو ہے نا, یہ جب آپ کے اوپر یہ بات ہوگی کہ آپ ہی وہ ہیں جن کا آپ لوگوں میں انتظار کر رہے ہیں, وہ مجھ سے محبت کریں گے تو میرے اندر یہ خوبصورتی آئیں گی. آپ ہیں محبت کے قابل, آپ خود کو ایکسیپٹ کریں گے تو خوبصورتی آئیں گی. اس کو بھی دیکھیں گی جو آپ کی خوبصورتی نہیں دیکھ پا رہا یا دیکھ پا رہی. یہ ایک زمانہ ہے. آپ جب اس بات کو سمجھ جائیں گے نا کہ آپ ہی وہ کمال ہیں جو آپ کی زندگی میں ہونا تھا, تو آپ یقین کریں لوگوں کے تو صرف دن آتے ہیں, اچھے دن آتے ہیں, آپ کا دور آئے گا, پیریڈ ہوگا پورا. آپ ہسٹری کو دیکھیں, جن لوگوں نے اپنے آپ پہ ایمان رکھا ہے, رب پہ ایمان رکھا ہے, اپنے مقصد کی لگن اور اپنے اندر یہ اگن جلائے رکھی ہے, ان کا دور آتا ہے. دور آپ کا بھی آ سکتا ہے, اس کے لیے پری ریکوزٹس ہیں, وہ کوالیفائی کیے بغیر نہیں آ سکتا. یہی رب ہے, یہی قانون ہے, اسی کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا ہے. اور پھر اس کی چاہت پہ جب آپ پورے اتر گئے, تو ساری چاہتیں آپ کی خود بخود آپ کی چاہتے ہی اتنی چاہتیں پوری ہو جائیں گی کہ چاہت ہی نہیں رہے گی کسی اور چیز کی. اسی تھاٹ کے ساتھ اگلا انشاءاللہ شو بھی شروع کریں گے, 10 Days of Silence and Solitude. چھوٹی سی ایک نظم, چار شعر آپ کی نظر کرتے ہیں, اور اس کے بعد آپ سے اجازت چاہتے ہیں. امید کرتا ہوں کہ جو کمی کجی رہ گئی ہوگی اس شو میں ہم آگے پوری کر لیں گے. آج کا آپ کا کنٹریبیوشن اتنا خوبصورت تھا کہ اگر میری آنکھیں آپ دیکھ سکتے تو آنکھوں میں آنسو تشکر کے دیکھ سکتے ہیں آپ, شکر گزاری کے, کہ اس سے خوبصورت کنٹریبیوشن نہیں ہو سکتا تھا. کچھ لوگ اور بھی تھے, لیکن کچھ لوگوں کو میں نے واٹس ایپ بھی لینا تھا, مجھے بات بھی کرنی تھی, یہ لوگوں تک یہ میسج بھی پہنچانا ہوتا ہے, کلپس بھی بنتے ہیں اس کے. میرے دل و دماغ پہ بہت ساری چیزیں ایک وقت میں آپریٹ کر رہی ہوتی ہیں, اس کے بیچ میں روانی رکھنا, ذہن کے اندر اس بات کو پکڑ کے رکھنا, اس کو پہنچانا. باقی جو کمال ہمارا کام مہربان ہے, وہ لوگ جو کہ یہ کلپس بنا کے آپ لوگوں تک پہنچاتے ہیں, تو بہت کچھ میرے دل میں اور دماغ میں اور آنکھوں میں چل رہا ہوتا ہے, اس کے بیچ میں میں کوشش کر کے کوئی چیز آپ تک کریٹ کر کے پہنچاتا ہوں, تو اس میں کمی کجی آف کورس ہو جاتی ہے. تو اس کے لیے آپ معذرت معاف کر دیا کیجیے, میں معافی بہت کم مانگتا ہوں آپ لوگوں سے, لیکن آپ لوگ روز ہماری کوئی نہ کوئی بات معاف کرتے ہیں, اور روز کسی نہ کسی بات پہ آپ کا دل جو ہے وہ دل موہ لیتے ہیں ہم. تو اسی خوبصورت سی بات کے ساتھ آپ سے ہم اجازت چاہتے ہیں. تو لیڈیز اینڈ جینٹلمین, اگلے شو میں انشاءاللہ بہت مزہ آنے والا ہے, اور اس کے بعد والا شو جو ہے ایک پورا شو رکھ لیتے ہیں, اور وہ ہم شو ڈیڈیکیٹ کریں گے اپنے اس لسنر کو. شو کا نام ہے ٹف لو, دا کانسیپٹ آف ٹف لو, دی اپلیکیشن اینڈ دا ڈیزائر ریزلٹس. ٹھیک, تو یہ بھی شو آگے آنے والا ہے, تاکہ ہم اس میں سے بہت ساری, ہم لوگوں کو بہت کچھ سیکھنے سمجھنے کی ضرورت ہے. جب تک زندہ ہیں, گود سے گور تک, ایسے نہیں کہا گیا, ماں کی گود سے گور قبر تک ہم کو روز سیکھنا ہے, آخری سانس تک سیکھنا سکھانا سمجھنا سمجھانا ہے, اور اسی طرح زندگی سے نکل جانا ہے. لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کیجیے گا, رب آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا. میں اور کیا کہوں آپ سے, کیا کہیں اس سے جو بات سمجھتا ہی نہیں, کیا کہیں اس سے کہ جو بات سمجھتا ہی نہیں, وہ تو ملنے کو ملاقات سمجھتا ہی نہیں. ٹھیک, واپس آتے ہیں جی آپ کے پاس. ایک بار پھر جملہ ایک بھی یاد رہ جائے گا, زندگی بدل جائے گی, میری بدل گئی.
0: لوگوں کے لیے آسان. تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے.
3: اور یہاں آج کے ہمارے اس پروگرام کا اختتام ہوتا ہے جی. دس از آزاد سائننگ آف. یو کین آلسو لسن ٹو آر ریڈیو اسٹیشن ایٹ www.radioazad.us. اس کے علاوہ اگر آپ پوئم سننا چاہتے ہیں, نظمیں سننا چاہتے ہیں, تو آپ ساؤنڈ کلاؤڈ پہ جا سکتے ہیں, مکس کلاؤڈ پہ. اسپیشلی بتانا ضروری ہے ان تمام لوگوں کو جو شوز کی ریکارڈنگ یا اپنے فیوریٹ شوز کی ریکارڈنگ سننا چاہتے ہیں اپنے ٹائم کے اوپر. آپ لوگ مکس کلاؤڈ پہ جا کے ریڈیو آزاد کو سرچ کیجیے اور ہمارے شوز وہاں پہ آپ ان کی ریکارڈنگ سن سکتے ہیں. اور یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ جن لوگوں کے پاس آئی فون ایپ ہے, اینڈرائڈ ہے, بلیک بیری ہے, اسمارٹ فونز ہیں, وہ لوگ ہمیں ہمارے آئی فون ایپ کے تھرو سن سکتے ہیں جو ہے ریڈیو آزاد. دعاؤں میں یاد رکھیے گا زندگی ری تو پھر ملیں گے. اور سب سے امپورٹنٹ بات, لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کیجیے گا, رب آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا. خدا حافظ.

0: Enjoy quality and tasty 100% authentic halal Chinese and Thai food from Gao Express, brought to you by the team behind Top's Pizza in Luton. Choose from all your delicious Chinese and Thai favourites. Then order for delivery or collection from Gao Express in Wellington Street, Luton, Marketplace Stevenage, and now also on Nightingale Road in Hitchin. Open daily midday till late. Find the number or order online at Gao, that's G-A-O, express.co.uk, or like Gao Express on Facebook.
1: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम किरण है। कोट कश्मीर ऑर्फन्स रिलीफ ट्रस्ट मेरा एक खूबसूरत घर है, जहां मेरे साथ सैकड़ों यतीम और बेसहारा बच्चों की तालीम व तरबियत और पुरसकून माहौल में परवरिश हो रही है, और ये सब कुछ आपके तावन से मुमकिन है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह करीम आपको सदा सलामत रखे, और उम्मीद है कि आप इसी तरह अपना प्यार मोहब्बत और तावन जारी रखेंगे। कोट UK ऑफिस 03001233774 core.org.uk।

फारसी क्या है? दिल की नरमी। और अर्रहमान कौन है? जो सबसे ज्यादा मेहरबान है। जिस शख्स का दिल नरम होता है ना, वो हर एक के लिए मेहरबान होता है, हर एक के लिए शफीक होता है, हर एक के लिए उसके दिल में खैर होती है। और जो संग दिल लोग होते हैं, हार्ड हार्टेड होते हैं, उनको अपने सिवा किसी से प्यार नहीं होता, वो सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। बस उनको ये पता कि हम हैं, उन्हें ये नहीं पता कोई और भी है, दूसरे भी हैं। ऐसा शख्स किसी के कुछ काम आने वाला नहीं होता। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अर्रहमान अर्रहीम। और अर्रहमान में क्या है? वसत। रहमान का लफ्ज आते ही क्या सोचना चाहिए? वसत, कसरत, बहुत ज्यादा मेहरबान, भर जाने का तसव्वुर। और अर्रहीम, बार बार और तसलसल, मुसलसल, हमेशा। पहली तरह की रहमत किसके लिए? सब के लिए। और अर्रहीम मोमिनों के लिए, यहां भी है और वहां भी होगी, तसलसल, कंटिन्यूटी है उसमें। मालिक और मलिक में क्या फर्क? मालिक का क्या माना? ओनरशिप, अथॉरिटी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। मालिक जिसके पास ओनरशिप भी हो और अथॉरिटी भी हो, और मलिक जिसके पास ओनरशिप तो हो लेकिन जरूरी नहीं कि अथॉरिटी भी हो। यौमुद्दीन से मुराद कौन सा दिन है? आखिरत का दिन है। दीन का लफ्जी माना क्या है? व्हाट्स द लिटरल मीनिंग ऑफ दीन? जजा और अमल दोनों के लिए, बदला और अमल दोनों के लिए आता है दीन, ठीक है। तो क्यामत का दिन यौमुद्दीन क्यों कहा गया? कि उस दिन क्या होगी? वो बदले का दिन है, जजा मिलने का दिन है। जो कुछ हम दुनिया में अमल करते हैं वहां उसका बदला पाएंगे, नतीजे का दिन है। जैसे आप सब स्कूल में गए होंगे बचपन में, तो जब हम छोटे थे उस स्कूलों में 31 मार्च को रिजल्ट आता था, वो दिन सबके लिए खौफनाक दिन होता था, यौमुद्दीन होता था। उस दिन इनाम, जजा या सजा जो भी हो किसी का, नतीजा निकलता था। और ये दिन जो नतीजे का दिन है, ये आखिरत का दिन है। जब तारीफ उसके लिए है, रब्बुल आलमीन वो है, रहमान और रहीम वो है, हमारा अंजाम भी उसी के हाथ में, यानी उसने पैदा भी हमको किया है, और मालिक यौमुद्दीन वापसी भी उसी की तरफ है, तो फिर हमें यहां क्या करना चाहिए? दुनिया में क्या करना चाहिए? उसी की इबादत करनी चाहिए, उसी का बन के रहना चाहिए। इय्याका नअबुदु, इबादत का क्या माना है? बंदगी। कौन सी बंदगी? इताअत और मोहब्बत और ताजीम और अल्लाह के लिए आजजी करना, इंतहा दर्जे की कामिल आजजी और खुजू। अल खुजू व तदल्लुल अरबी में दो लफ्ज इस्तेमाल होते हैं, लेकिन उर्दू में क्या? इंतहा दर्जे की आजजी का इजहार, अपने आप को अल्लाह के सामने क्या साबित करना, क्या जाहिर करना, कि हम कमजोर हैं, आजिज हैं। और इसकी बेहतरीन शक्ल क्या है? सजदे की हालत। इसीलिए इबादत में पहली इबादत कौन सी? नमाज। और इबादत मुश्किल काम है, हर मौके पर उसी की बात मानना, अपनी मर्जी, अपनी ख्वाहिश को पीछे करके अल्लाह की मर्जी मानना, ये इबादत होती है ना, तो ये मुश्किल काम है, आसान नहीं है। तो इसके लिए फिर हमें क्या करना चाहिए? छोड़ देना चाहिए। बहुत से लोग तो कहते हैं ये मुश्किल हो ही नहीं सकता, तो हमें क्या सिखाया गया कि क्या करना चाहिए? अल्लाह से मदद मांगनी चाहिए। इसलिए दोनों चीजें साथ साथ आई हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, यानी इबादत भी तेरी करते हैं और दुआ भी तुझी से मांगते हैं। बेहतरीन दुआ क्या है दुआओं में? बहुत कुछ मांगते हैं हम, लेकिन सबसे पहले क्या मांगना सिखाया गया? सिरात मुस्तकीम, एहदिना सिरात अल मुस्तकीम, एहदिना हिदायत। हिदायत होती क्या? हिदायत का क्या माना होता है? रास्ता दिखाना, नरमी और मोहब्बत के साथ किसी को गाइड करना, राह दिखाना, एहदिना। हिदायत दो तरह की होती है, कौन कौन सी? इल्मी और अमली। तो हमें इल्म भी दे और अमल भी दे, इल्मन नाफियन व अमलन सालिहन। ये दो लफ्ज लिख लीजिए, हिदायत इक्वल टू इल्मन नाफियन व अमलन सालिहन। पहले मैं सोच रही थी कि मैं रिवीजन ना करूं आपके साथ, अब मुझे लगा है कि नहीं जरूरी है, क्योंकि पहली दफा जब इंसान सुन